भजन करो हरि जगत करतार, भजन करो हरि जगत।

उठा सा टुका नारद देखे करम की रेखा सा तो मन से भज लो रे हरि, तन से भज लो रे हरि, राम नाम है जग में।

ए अमर नाथ की अमर कहानी सब जग में हो गई हो सीता। ए मन से भजलो रे हरी, तन से भजलो रे हरी।

0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। और जैसा कि श्रोता साथियों आप जानते हैं कि शुभ कल कार्यक्रम में हम विभिन्न प्रकार के विषयों पर हम चर्चा करते रहते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं राजेश जी, जो कि यहाँ पर आके उन्होंने बहुत सारे गाँव में विजिट किया है। और खास तौर पर जब हमारे पानी बचत की बात आती है या क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलती हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कि हमारे आप स्टूडियो में पहली बार आपने यहाँ पर आए हैं, तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर।
2: धन्यवाद
1: सर। जानना चाहेंगे आपसे कि जो क्लाइमेट यानी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे खासतौर पर खेती पर बहुत ज्यादा प्रभाव और खासतौर पर किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्या बातें हैं जो हमारे समुदाय के लिए बहुत जरूरी है, किस तरीके से हम जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको हम किस हद तक हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं सर?
2: सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया आपके इस रेडियो के माध्यम से। जहां तक आपने जो प्रश्न किया, बहुत आज की जो परिस्थितियां हैं और खासतौर पे बुंदेलखंड में जो परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रख करके देखें तो क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा असर हम किसान भाइयों को सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। और उसकी जो मुख्य वजह है कि हम यदि कुल बारिश में देखें, यदि वर्षा का आंकड़ा देखें, तो कभी कभी हमको लगता है कि आंकड़ा तो कुछ और कह रहा है कि बारिश में तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो जहां तक कुछ सालों की जब रेनफॉल की आंकड़ों को देखें तो वो अंतर नजर नहीं आता। बट अंतर क्या है कि जब पानी की जरूरत है तब पानी नहीं गिर रहा है
1: जी।
2: और एक साथ पानी बहुत तेजी से गिर रहा है
1: जी।
2: तो जो हमारी फसलें हैं उसको समय समय पे पानी की जरूरत महसूस होती है। और असमय पानी का गिरना ये क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा सब सामना कर रहे हैं। और जो समय पे पानी नहीं गिरने की वजह से फसलों के जो प्रोडक्शन है, जितना उत्पादन होना चाहिए उस उत्पादन में भी कमी हो रही है। और कभी कभी तो पूरी पूरी जो हमारी फसल है वो पूरी फसल, और जैसे कि मैं अभी इस साल आया हूँ कि पानी की वजह से पहली फसल जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल लगभग 70-80% फसल इस साल हुई नहीं,
1: हुई नहीं।
2: उसका सबसे बड़ा जो रीजन है कि इस साल अतिवृष्टि हो गई। तो पानी को

0: इतना जिस जगह पे होना चाहिए, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, पर बहुत ज्यादा यदि कम या बहुत ज्यादा वर्षा जो है वो इस फसल के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। और यही वजह है कि हमारे किसान भाई इस साल, अभी मैं 2 दिनों से आपके गांव में ही था
1: जी
0: खास तौर पे, तो पुरुष जो है वो सारे बाहर चले गए, क्योंकि गांव में अभी कोई किसान होकर के भी किसानी का काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि कोई फसल नहीं है।
1: जी
0: तो इस जो है ये बहुत बड़ा हमारे जो कृषि प्रधान देश के नाते, यदि किसानी का जब समय हमारा खरीफ की फसल को यदि हमारे इतना बड़ा क्षेत्र नहीं ले पाएगा, तो सोचे कि आगे जा करके जो हमारे अन्न की जितनी जरूरत है उसमें कितनी बड़ी। तो मेरा ये क्या मानना है ये 2 दिनों के इसमें, कि छोटे छोटे उपाय हैं जिनको यदि हम करें तो शायद ये जो गंभीर समस्याएं हमारा किसान भाई जो सामना कर रहे हैं, तो उसमें मुख्य रूप से हमें ऐसी फसलें लगाने की जरूरत है जो कि बहुत कम वर्षा में भी सहन कर सके, और थोड़ी अतिवृष्टि होती है तब भी वो फसलें हमें, जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे ज्वार,
1: जी
0: तो ज्वार एक ऐसी फसल है जो बहुत कम पानी होता है तब भी वो होती है,
1: जी
0: और सामान्य बारिश में तो वो अच्छी होती है, बट अतिवृष्टि के समय भी ज्वार की फसल, तो ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जिसको कि हमें कुछ मात्रा में उसको भी हमें, तो 2-3 तरह की हम फसलें लें जिसमें हमारा जो उत्पादन है वो कभी भी ऐसी स्थिति ना हो कि हमारा उत्पादन ना आए।
1: जी
0: तो फसलों का चयन हम ऐसा करें जो इस तरह की। तो उसके अलावा कुछ छोटे छोटे जो है हमें वाटरशेड के जो काम है, जो जल संरक्षण के कार्य है,
1: जी
0: उसको करने की भी हमको आवश्यकता है।
1: जी
0: और खास तौर पे जल संरक्षण में हमें 2 तरह के उपाय, जैसे अभी आजकल अतिवृष्टि भी होने लगी है, तो
1: जी
0: हमें वो भी उपाय करने हैं कि पानी को जब ज्यादा गिर जाए तो कैसे वो सुरक्षित हमारे खेत से बाहर निकल जाए, और जब पानी हमें कम चाहिए या जब मीडियम हमारी वर्षा हो रही है उस समय पानी को हम कैसे संरक्षण करके रखें, ताकि थोड़े कम समय का यदि उसमें अंतराल में पानी गिरता है तब भी हमारी फसल में जो मॉइस्चर है जमीन की उसी से उत्पादन में कोई फर्क ना पड़े। इसके अलावा भी और भी जो हमारे गांव की जितनी संरचनाएं हैं उसको हम समय समय पे उसकी उसको उसकी मिट्टी निकाल दे रहे हैं, ताकि उसका जो हमारा पानी का जो स्टोरेज एरिया है, जो संग्रह क्षमता है, उसमें किसी तरह की कमी ना हो।
1: जी
0: साथ ही साथ हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं, हमारे क्षेत्र में जो भी अन्य संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके साथ मिलकर के अच्छे से योजना बनाएं, और उन योजनाओं में अधिकतर हम पानी को संग्रहित करने के काम को जोड़ें,
1: बिल्कुल
0: और साथ ही साथ हम ये पूरा ध्यान रखें कि खेती में हम पूरा ये ध्यान रखें कि हमारे गांव में कितना पानी गिरता है,
1: जी
0: तो उस पानी के हिसाब से क्या हम फसल लगा रहे हैं, यदि पानी के हिसाब से नहीं है तो हमें क्या उपाय करने की जरूरत है, इस पे सोचने की जरूरत है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल राजेश जी, आपने बहुत ही हमारे श्रोताओं को, हमारे समुदाय के लोगों को बड़ी अच्छे तरीके से विचार करने के लिए विमर्श कर दिया है कि किस तरीके से हमें अपनी खेती में बदलाव करना चाहेंगे। चूंकि आखिरी सवाल हमारे मन में चल रहा था, हमारी जिज्ञासा थी कि आपसे ही पूछे, क्योंकि आप देश के कई जगह आपने भ्रमण किया है, बहुत सारी खेती में बदलाव देखे भी हैं। चूंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में, और हमारी सरकार भी कह रही है कि मोटे अनाज फिर से करना चाहिए, खेती में लाना चाहिए, आपका क्या मानना है कि इस क्षेत्र में किस तरीके से मोटे अनाज को लेकर लोगों को जागरूक करना चाहिए, किस तरीके से वो मोटे अनाज पर जाएं?
0: बहुत बड़ा सवाल आपने रखा है, और अभी देखें कि पूरा स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा हमारा खान पान का संबंध है, और हमारे देश में ये जो मोटे अनाज की आपने सवाल किया, तो इस यही अनाज हम खा रहे थे, बट हमने ये बदलाव कब से शुरू किया, जब से हरित क्रांति इस देश में आया।
1: बिल्कुल सर।
0: तो 19

0: 1970 में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो पंजाब हरियाणा ये जो हमारा गंगा नदी का एरिया है
1: जी।
0: इस क्षेत्र में दो फसल आई, गेहूं और चावल।
1: चावल
0: तो ये जो दोनों फसल है ये जो है हमारे शरीर के हिसाब से ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से ये किसके लिए अच्छा था
1: जी।
0: जो मेहनत करते हैं
1: जी।
0: बट आज हमारे जो शहर में खास तौर पे जितने लोग हैं या गांव में भी ऐसे लोग हैं जो शारीरिक श्रम नहीं करते, कोई स्कूल का टीचर है या कोई दुकान पे बैठता है, तो जिसका शारीरिक श्रम नहीं है
1: जी।
0: उनके लिए गेहूं और चावल जो है वो कहीं से भी शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो इसको पचा पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा श्रम करने की जरूरत है। और मोटा अनाज जिसकी आपने बात कही कि मोटा अनाज ऐसा अनाज है जिसका बहुत जल्दी हमारे शरीर में पचता है, और उससे जो आजकल की जो जो कॉमन बीमारियां हैं जैसे हम कहें कि हाई बीपी है या शुगर है, ये दो आम बीमारियां पूरे भारत में फैली हुई हैं। तो ये दोनों बीमारियों से यदि हम छुटकारा चाहते हैं तो सबसे बड़ा है कि मोटे अनाज, ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा
1: जी।
0: सबसे बड़ी चीज खासतौर पे बुंदेलखंड की बात कहूँ कि मोटा अनाज शरीर के लिए तो अच्छा है बट ये सबसे कम पानी की जरूरत इसमें महसूस होती है। तो यदि हमें बुंदेलखंड में, और हम माने कि बहुत अच्छे से हमारे दूसरी जनरेशन भी खेती का काम करें, खेती ना छोड़ें, तो हमें मोटे अनाज का अधिक से अधिक उत्पादन, चाहे वो रबी का सीजन, खरीफ का सीजन हो या रबी का, और यदि हम तीसरी फसल भी लेना चाहते हैं तो हम मोटे अनाज की ओर जाएं,
1: बिल्कुल,
0: ताकि हमारे देश की अन्य सुरक्षा भी हो और हमें जितना पानी हमारे पास है उसी पानी में, और ये नहीं, ये केवल बुंदेलखंड नहीं, जहाँ भी पानी की समस्या है वहाँ पे मोटे अनाज पे ही हमें जाना चाहिए।
2: सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत आपने बता दी है। चूंकि आपके पास समय बहुत ही कम है तो हम आग्रह करेंगे कि जब भी आपसे हमारी मुलाकात हो, चाहे वो फोन के माध्यम से या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका भ्रमण हो, तो आप जरूर आइएगा इस विषय को लेकर। चूंकि हम ऐसे विशेषज्ञों को चयन कर रहे थे कि मोटे अनाज पर कम से कम बोल सके, बहुत सारे लोगों से हमने सर टॉक की है तो बहुत ही कम लोगों को इस तरीके के बारे में जानकारी है। चूंकि मोटे अनाज को लेकर लोग पूछते भी हैं, जब कम्युनिटी के पास या समुदाय के पास हम लोग जाते हैं मोटे अनाज पर, उनसे आग्रह करते हैं कि आने वाले समय में हमें मोटे अनाज पर जाना चाहिए, लेकिन समस्या यही रहती है कि ना तो उसका बाजार है और ना ही करने का जो तरीका है वो लोग भूलते चले जाए चूंकि नई जनरेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, थैंक यू।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। और अभी आपने हमारे डॉक्टर राजेश वर्मा जी को सुना, बड़े अच्छे उन्होंने अनुभव अपने बयां किए हैं। साथ साथ में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर बड़े विस्तार से हमारे श्रोता साथियों को बताया है। साथ में मोटे अनाज को लेकर भी उन्होंने प्रकाश डाला है कि किस तरीके से हम अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में मोटे अनाज पर ध्यान दे सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, बड़े विस्तार से इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया है। हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथियों को ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण लगी होगी, और ख़ास तौर पर ऐसी ऐसी जानकारी जो हमारे श्रोता साथियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। हम कोशिश करते हैं उन जानकारियों को कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाएँ। हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर राजेश वर्मा जी का, जिन्होंने समय निकालकर इस बुंदेलखंड क्षेत्र में 2 दिन विजिट किए और कई गांवों का भ्रमण भी किया है, क्योंकि ये भारत के कई जगहों पर जाकर इन चीज़ों पर देखते हैं, बातचीत करते हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे स्टूडियो में रेडियो बुंदेलखंड में आए और उन्होंने अपनी बातचीत को रखा है। धन्यवाद देना चाहते हैं। साथियों, अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम शुभ कल कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 9219207749, या फिर चिट्ठी के माध्यम से अगर आप

हमें अपने सुझाव भेजना चाहते हैं तो हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा देगला के पास ओरछा। और हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, और उन्होंने बहुत मधुर आवाज में अपने एक गीत को प्रस्तुत किया है, उस गीत को हम सुनते हैं उनकी ही आवाज में। नमस्कार।

0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है और पदचिन्ह बनाने वाला ही इस जग में पूजा जाता है। सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो साथी मनीष
2: और आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और साथियों हम होंगे कामयाब में हम बात करेंगे आज सफल कहानी को लेकर नंदिनी दीक्षित जी से। जी हाँ श्रोताओं, तो अब देर नहीं करते हैं क्योंकि ऐसी ही एक कहानी हमारे बीच में आज फिर से मौजूद है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत अच्छा कार्य किया है। तो हम देर नहीं करते हैं, आप सभी को ले चलते हैं नंदिनी दीक्षित जी के पास।
1: और नंदिनी दीक्षित जी से हम जानते हैं कि किस तरीके से वो कामयाब होती चली गई और आज इस मुकाम तक पहुंच गई हैं। आज उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे लोगों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। तो आइए आपको सीधा ले चलते हैं नंदिनी दीक्षित जी के पास, उनकी कहानी को हम जानते हैं कि किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण को लेकर उन्होंने कार्य किया है। तो आइए सुनते हैं नंदिनी जी को, जिनसे बात कर रहे हैं शशांक दुबे जी, एजुकेशन ऑफिसर हैं। तो आइए इनकी वार्ता को हम सुनते हैं।
2: साथियों नंदिनी दीक्षित जी से हम आगे बातचीत जरूर करेंगे, उनकी कहानी को सुनेंगे कि किस तरह से उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम किया हुआ है अपने क्षेत्र में और काफी काम वो अभी भी कर रही हैं। जहां पर वो पढ़ाई कर रही हैं वहां पर भी वो पर्यावरण को लेकर कार्य कर रही हैं लगातार। तो उनसे हम बातचीत आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर हम एक छोटा सा लोकगीत सुन लेते हैं पर्यावरण से जुड़ा हुआ, उसके बाद लौट के आते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में।
3: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन।

0: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में अबे अपन ने सुनो ये प्यारे से लोकगीत खो जी खोका रहे थे बालिक दास कुशवाहा और उनके साथी। और अब हम देर नहीं कर रहेंगे, आपको ले चलेंगे सीधे नंदिनी दीक्षित जी के पास, जिसे बातचीत कर रहेंगे शशांक जी, और उनसे जानेंगे कि कैसे वे प्रेरित भई थी, कौन तरह से उनने पर्यावरण को समझो और फिर उसके बाद वे काम करने लगी पर्यावरण को लेके। तो आओ उन्हीं से सुना थेंगे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी।
0: नंदिनी जी
2: नमस्ते।
0: नंदिनी जी, हमारे साथ जो आज लिसनर्स जुड़े हुए हैं इस रेडियो चैनल के माध्यम से, क्या आप उनको अपना नाम और उस जगह के बारे में कुछ बातें बता सकते हैं जहां आप बड़े हुए हैं?
2: तो देखिए, मेरा नाम है नंदिनी दीक्षित और मैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बचेली नगर की निवासी हूँ। और मैं बेसिकली अभी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में बीटेक की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। और मैं बेसिकली तो मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, कानपुर से हूँ मैं, बट हम यहाँ शिफ्ट कर रहे थे दंतेवाड़ा बचेली में, एंड बचेली इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, तो नेचर से काफी कनेक्टेड है वो जगह।
0: शुक्रिया नंदिनी जी। नंदिनी जी, आपने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो कार्य करे हैं उसकी शुरुआत किस जगह से करी थी और क्या क्या कार्य आपने संरक्षण के प्रति करे हैं?
2: एक्चुअली मेरे डैड पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे थे, तो वो एक उन्होंने 26 जुलाई 2019 को एक वन बर्ड की शुरुआत की थी। उस वन का नाम अमोद अरण्य है और इसको हमने कारगिल दिवस पर कारगिल योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के रूप में की थी। हम बैरन लैंड पे प्लांट्स लगा रहे थे और उन्हीं से मैं इंस्पायर होके मैं खुद एक कैंपेन चलाती हूँ, एक पेड़ शहीदों के नाम, जिसके तहत मैं हर महीने की 19 से 25 तारीख को शहीदों के नाम पे पौधारोपण करती हूँ। तो इसी के साथ हम स्टूडेंट्स के लिए भी कैंपेन चलाते हैं। हम स्टूडेंट्स को बेसिकली हम नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो यूथ है और यूथ हमारे फ्यूचर जनरेशन को किस तरीके से अच्छे से, हमारे फ्यूचर जनरेशन है वो, तो वो अच्छे से पर्यावरण को समझे और उसके लिए कार्य करें, तो उनके लिए हम कैंपेन्स चलाते हैं। हम डोर टू डोर अवेयरनेस

0: कैंपेन्स भी चलाते हैं और इसी के साथ हम जैसे प्लास्टिक के लिए भी कैंपेन चलाते हैं, इको ब्रिक्स बनाने। और यहाँ पे जैसे बचेली में हमारे कैंपेन से काफी घर ऐसे हैं जो अपना घर का प्लास्टिक घर में ही रखते हैं। तो बेसिकली अपने फादर से मैंने इंस्पायर होके ये चीजों की शुरुआत की थी एंड होपफुली ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम और आगे भी करते रहेंगे।
1: तो जो आप युवाओं के लिए उनको प्रेरित करते हैं कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण की हर चीज को बारीकी से समझें, इसमें आपने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया है?
0: तो सबसे बड़ी चुनौती जो मैंने फेस की है वो क्योंकि मैं एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ, तो मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव है, दे ऑलवेज सपोर्ट मी, जो मुझे करना है वो मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं, वो हमेशा मुझे प्रेरित करते कि नहीं आपको ये करना आप कीजिए। बट लोगों से वो रिस्पॉन्स नहीं आता था, पीपल वे लाइक कि आप मतलब एक आपकी बेटी आप ऐसा इस लाइन में क्यों डाल रहे हैं, इस लाइन में क्यों डाल रहे हैं। तो ये चीज तो थी, साथ में रिस्पॉन्स बहुत कम आता था, लोग उतना मतलब लाइक इतना इस चीजों पर्यावरण और ये सब चीजें इतनी सीरियसली लेते नहीं थे। तो अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं पूरा ओवरकम कर गई हूँ इन सब चीजों से, बट काफी हद तक हमने लोगों को प्रेरित किया है और उनको पर्यावरण से जोड़ने की कोशिश की है।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी जी। सो आज जो हमारे साथ लिसनर्स जो जुड़े हुए हैं इस रेडियो चैनल के माध्यम से, जो युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, के अनुसार उनके लिए ऐसा क्या मैसेज है जो उनको ध्यान से सुनना चाहिए और भविष्य में वो कार्य करने चाहिए, ऐसे कौन से कार्य आप उनको बता सकते हैं?
0: जी तो देखिए, मेरा पर्सनली ये मानना है कि छोटे छोटे स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं, जैसे बूंद बूंद से गरा बन से भरता है, तो ऐसे छोटे स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं और इंडिविजुअल एक्शंस तो बहुत जरूरी है। हमें खुद से समाज तक जाना है और खुद को पहले खुद को बदलना है, खुद को एक एग्जाम्पल सेट करना है समाज के सामने। तो आप किसी भी सिचुएशन में आप कहीं भी हो, आप पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे कार्य भी करते तो वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं बाहर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में, मैं अपने पीजी में हूँ, बट स्टिल मैं इको ब्रिक्स यहाँ पे भी मैं बनाती हूँ। तो लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कहीं भी हो, पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे कार्य करिए। आप जैसे इको ब्रिक्स मैं बनाते हैं, आप इको ब्रिक्स बना सकते हैं। और फिर लाइक बहुत सारी चीजें हम जैसे हमें प्लांट्स पे ज्यादा डिपेंड रहना चाहिए, मेरा ऐसा पर्सनली मानना, प्लांट्स पे डिपेंड रहिए, आप अपना थैला खुद लेके जाइए बाहर, ऐसे बहुत सारी चीजें लाइक लाइट ऑफ लाइट ऑन, ये हमको बचपन से सिखाया जाता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं, आप यहाँ से शुरुआत करिए और फिर आगे तो फिर बढ़ेगा ही। तो मेरा सबसे यही है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और घर से अपने शुरुआत कीजिए, एक पेड़ लगाइए अपने घर पे और उसके अच्छे से केयर कीजिए, तो आप उससे कनेक्ट होंगे। तो जब आप नेचर से कनेक्ट होंगे तो आप खुद आइडियाज निकालेंगे कि और ऐसा क्या कर सकते हैं मदर नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि कई चीजें ऐसी होती है जो पर्यावरण को हार्म कर रही होती है पर हमें उनके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, तो हमें उन चीजों के बारे में रिसर्च करना है, हमें पढ़ना और सजग रहना है और सभी चीजों के प्रति हमें संवेदनशील रहना है। हमें हमें पेड़ में हमें जान महसूस करनी है, हमें संवेदनशील इतना होना है कि हम सब चीज में जान महसूस करें। तो ऐसा छोटे छोटे ऐसी चीजें हमें करते रहनी चाहिए।
1: शुक्रिया नंदिनी जी। आपके अनुसार पर्यावरण से रिलेटेड शिक्षा, पर्यावरण से की जो जागरूकता है हमारे अंदर, वो कैसे और अच्छे तरीके से छोटे बच्चों में और युवाओं में जनरेट करी जा सकती है?
0: आई थिंक ये चीजें प्रैक्टिकल के थ्रू ज्यादा की जा सकती है। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं पेड़ लगाऊंगा, हमें ये कि मैं पेड़ लगा चुका हूँ और उसकी मैं केयर कर रहा हूँ, हमें इस जगह शिफ्ट करना है। हमें बच्चों से प्रैक्टिकल कराना है कि बच्चों से एक पौधा लगवाइए, उनको बोलिए आप इस पौधे की केयर कीजिए, क्योंकि लाइक पौधा ऐसा चीज है, प्लांट एंड ट्रीज आर द थिंग्स लाइक, वो बहुत ही वैल्यूएबल है। हमें मतलब उनको अच्छे से बच्चों को ये चीज सिखानी है, तो हमें प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसी से आई थिंक ज्यादा लोगों के अंदर और जागरूकता आएगी। आप जैसे बच्चे जा रहे हैं फैन ऑन करके चले गए, तो आप उनको सिखाइए नहीं आप फैन बंद कीजिए, सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें रहती है, छोटी छोटी चीजें जो हमें किड्स को स्पेशली सिखानी चाहिए। और बचपन से जैसे हम इन्हें प्रैक्टिकल कराएंगे इस चीजों का, तो आई थिंक उनके अंदर ज्यादा इस चीजों की वैल्यू आएगी। जब बड़े होंगे वो और पढ़ेंगे इस बारे में आगे क्लासेस में, तो वो चीजें जब बचपन से भी वो कर रहे होंगे तो उनको एक्चुअल मीनिंग तब पता चलेगा कि ओके हमारे पेरेंट्स हमें छोटे से क्यों बोलते थे कि वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हेन दे विल रीड अबाउट इट तो तब वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसलिए हमें बचपन से ही बच्चों को नेचर से कनेक्ट करके रखना चाहिए। लाइक माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज कनेक्टेड मी विद नेचर, वो हमेशा से मुझे बचपन से मुझे सिखाते थे कि नहीं बेटा पानी बचाइए, आप नल बंद कीजिए, हमेशा आप घर से निकल रहे हैं बाहर के लाइट्स एंड ऑल एवरीथिंग ऑफ करके चलिए।

0: जो बताता है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उसको ग्रैप करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो सीखते हैं. तो यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स का तो बहुत ही मेजर रोल है. उनको भी लाइक टाइम टू टाइम बच्चों को उनके प्रैक्टिकल्स कराना चाहिए. स्कूल कैंपसेस बड़े होते हैं, वहां पे प्लांट्स लगा के उनको बोलना चाहिए कि आप अपने पौधे का केयर कीजिए, क्योंकि बच्चा डेली स्कूल आता है. अब वो अपना एक प्लांट लगाएगा, वो उसको डेली वाटर कर सकता है, तो वो डेली का एक प्रैक्टिकल, वो तो बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ बच्चे और अच्छे से सीख सकते हैं. एंड लाइक वो तो इतना कॉम्पिटिशन कराए ताकि लोग और पर्यावरण के बारे में जाने. जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन हम करा सकते हैं स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, अगर फिर प्लेस होते हैं जिसके थ्रू वीडियोज एंड प्लेस के थ्रू भी लोगों को हम पर्यावरण के से कनेक्ट कर सकते हैं. तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. उन्हें प्रोबेबली स्टूडेंट्स से प्रैक्टिकल्स कराना चाहिए और अपने कैंपस को भी इतना अच्छा ग्रीन एंड ऑल रखना चाहिए कि लोगों को देख के इतना सुकून मिले. तो वो चीजें और ज्यादा कनेक्ट करते हैं जब आप देखते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं. तो एज आई सेड, तो वो चीजें ज्यादा वर्क करेंगी. तो यूनिवर्सिटी एंड स्कूल को तो कॉम्पिटिशन कराने चाहिए एंड वो खुद इस चीज में सजग रहेंगे तो आगे और अच्छा कर पाएंगे.
1: शुक्रिया नंदिनी जी.
2: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार.
3: अपने रेडियो अपनी बातें साथी हरो भैया हरो, अपन अब सुन रहे हते नंदिनी दीक्षित जी को जिनने पर्यावरण को लेके बहुत अच्छो काम करो है वो. अब हमारे साथी जो है तनक सोच में भी हुए के पर्यावरण से जुड़ी हुई बातचीत तो अपन सुपकल कार्यक्रम में करत रहेंगे, लेकिन आज हम होंगे कामयाब में भी सुपकल. तो भैया ऐसा नहीं है, देखो सुपकल को हमने कही थी कि अपन को ध्यान रखने है गो और हर एक चीज में अपन को सुपकल देखने है गो. सो नंदिनी दीक्षित जी जो हैंगी वे एक सफल महिला हैंगी, यानी कि उनने जो काम की वो नींव रखी हती उनमें भी सफल भई हैंगी, यानी पर्यावरण से जुड़ो जो कार्य वे कर रही हती उनमें भी सफल भई हैंगी. यही से अपन को लगो के हम होंगे कामयाब में. आज के दिन अपन जो सफल कहानी लेके आतेंगे तो कायना बा पर्यावरण से जुड़ी हुई कहानी आप सबको सुनो आवे.
4: और वर्षा हमें भी लगा थे वो कि नंदिनी दीक्षित जैसी ऐसी हमारी जो सफल महिलाएं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लाने बहुत ही नोनो काम करो है वो. और हमें एक बात और के वो वाले हैंगे कि पर्यावरण के लाने तुमने भी बहुत अच्छा काम करो, तो हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देवो चाहते हैंगे. और अपने कुछ अनुभव पर्यावरण से जुड़े जरूर साझा करो, कैसे हम वो और आप सफल कहानी के माध्यम से तो जानते ही हैंगे. वर्षा के बारे में सब लोग ने जानत हैंगे कि वर्षा रेडियो बुंदेलखंड में काम करत हैंगे, लेकिन पर्यावरण के लाने विशेष तौर पर अब एक महीना में इन्हों पुरस्कृत करो गो तो, और विशेष तौर पर इन्हों बुलाओ गो तो कि आप बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपने जो सोगहन में मिलके पर्यावरण के लाने जो मुहिम छेड़ी हैगी और पर्यावरण के लाने तरह तरह के कार्यक्रम बनाए हैं, खासतौर पर रेडियो से बनाए जो कार्यक्रम और नैरोकास्टिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करो, तो कछु अपने श्रोता साथियों को पर्यावरण बचावे के लाने कछु संदेश, पर्यावरण संरक्षित के लाने का संदेश आप भी दो.
3: सबसे पहले तो मनीष भैया हम आपको बता देवे कि जो काम की जो तारीफ आप पुल बांधवे जा रहे हैंगे वो काम को बरसा ने अकेले नहीं करो है गो, हमारी पूरी टीम जैसे कि मनीष भैया हैंगे, माता दीन भैया हैंगे, अपने जगरूप भैया भी हते, उनने भी प्राची रामपाल अबे तक के जितने भी रेडियो के साथी काम करत हते सबने मिलके काम करो है गो. सो ये तारीफ के हकदार अपनो पूरो रेडियो बुंदेलखंड को स्टाफ है गो. सो अनुभव के लाने अगर मनीष भैया आपने बात छेड़ी हैगी तो आपको बता देवे कि सुपकल कार्यक्रम अपन और 2013 से लगातार अपने साथियों के बीच में चला रहेंगे और समय के अनुसार जो समय की मांग होते ही उन सब चीजन को अपने साथियों के बीच में अपन प्रसारण करेंगे. जैसे अगर हमारे कोनो किसान साथी पूछत हैंगे अपन से कि अगर पर्यावरण को सही रखने है गो तो उके लाने अपन और कौन सी बीजन को चयन करवे, कौन सी खाद को उपयोग करवे, तो बस इन्हीं के बारे में अपन और ने जागरूकता बढ़ाई हैगी. काम करवे की तो अपन बात नहीं कह सकत, लेकिन अपन ने जागरूकता बढ़ाई हैगी इन गांवन में. सो जी की वजह से लोग समझ गए हैंगे और अब खुद से काम करवो उनने शुरू कर दो है गो. तो सफलता जो मिली हैगी वह रेडियो बुंदेलखंड को मिली हैगी.
4: बिल्कुल, और संगे संगे आप भी उसके पात्र हकदार होगी. कैसे यूएन क्लाइमेट चेंज यंग लीडर में आपको सिलेक्शन भी हुआ तो, और आपको बता दें वो चाहे जाके बाद सिलसिला रुको नहीं है और एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करके आज हम और आप देख रहे हैं कि पूरे पेपरों में क्लाइमेट चेंज को लेकर अपनी बुंदेलखंड क्षेत्र से श्री वर्षा का चयन किया गया था. और बड़े गौरवान्वित की बात है कि इस तरीके की कुछ

0: उपलब्धियां रेडियो बुंदेलखंड को प्राप्त भई हैंगी, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करत हैंगे आप लोगों को स्नेह जो मिले हुएगो, और खास तौर पर रेडियो बुंदेलखंड की इतनी चर्चा खासतौर पर पूरी देश में सुनाई जा रही हैगी कि रेडियो बुंदेलखंड द्वारा कितनो अच्छो काम करो जा रहा हैगो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर साथियों आपको वर्षा की पूरी कहानी आपको सुनने हैगी तो आप फोन कर सकते हैंगे, और अगर सबसे ज्यादा जन के मतलब फोन आ गए हैंगे कि वर्षा की पूरी कहानी अब तक को सफर आपको सुनने हैं तो कॉल कर सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया मनीष भज्जा, आपने तो ऐने ही नोनी बात बता दी हैगी, और वर्षा की कहानी इतने अपन सफल कहानी सुन रहे थे, और सफल कहानी में अपन ने आज वर्षा की कहानी पे ज्यादा फोकस कर लो है को, सो इन सब चीजन पे आपको ध्यान नहीं देने है, बस केवल मनीष भैया को उद्देश्य जो है तो वो जो है तो के रेडियो बुंदेलखंड को एक सफलता आज मिल गई हैगी, बड़ा अच्छो लग रहा है, और इन सबको श्रेय जो है वो अपनी टीम को तो जाता ही है लेकिन संग में अपने श्रोता साथी इनको भी जाते है, क्योंकि जो भी चीजें अपन इतने ब्रॉडकास्ट कर रहे थे अगर अपने साथी भैया सुन के उनमें बदलाव नहीं करेंगे तो अपन उन्हें सफल नहीं हो पाएंगे, तो हम साथियों से भी यही अपेक्षा कर रहे थे कि भैया आगे भी आपको साथ हमारे संगे ऐसे ही बनो रहे ताकि रेडियो बुंदेलखंड हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचत रहे, और देखो आप ज्यादा बतकाव नहीं करने है गो काहे कि अपनो समय कार्यक्रम को इतना समाप्त हो जा रहा है गो, सो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
0: और मनीष को देव जावे की इजाजत,
1: फिर उज्जा आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।
2: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन।

0: Ministry of Jal Shakti, Department of Drinking Water and Sanitation द्वारा संचालित Community Radio Association द्वारा निर्मित
1: कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।

0: अरे पता नहीं स्वच्छिका कहाँ रह गई। इतना लेट तो वह कभी नहीं होती है। लगता है आज मुझे अकेले ही कार्यक्रम बनाना पड़ेगा।
1: रुको रुको, मैं आ गई।
0: अरे आ गई तुम? मुझे लगा कि कहीं पानी भरने तो नहीं चली गई।
1: अरे आ गई। अच्छा, पानी भरने? नहीं नहीं सुजन, कुएं हैडपंप पर जाना हुआ बीता हुआ कल, अब तो है हमारे घरों में नल से जल।
0: हाँ सही कह रही हो तुम। पहले और अब में बहुत फर्क आ गया है।
1: मुझे आज भी याद है कि कैसे मेरे गांव में महिलाएं, बच्चियां और लोग सुबह से पानी के इंतजाम में लगे रहते थे ताकि बाकी काम समय पर पूरे हो सके।
0: सही कह रही हो। कितनी बार तो उन्हें दिन में दो दो चक्कर लगाने पड़ते थे ताकि पानी कम ना पड़ जाए।
1: और बच्चियों की पढ़ाई भी छूट जाती थी। यही नहीं, गंदे पानी के सेवन से बीमार होना तो आम बात हो गई थी।
0: पानी रे पानी तेरा रंग कैसा,
1: सोचूं मैं सोचूं तेरा ढंग कैसा।
0: वाह स्वच्छिका, ये तो नया गाना बन गया है।
1: सुजल महाशय, गाने का समय खत्म, कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए।
0: ओ हाँ, आप सभी को सुजल का
1: और स्वच्छिका का नमस्कार।
0: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम प्रस्तुत है।
1: स्वच्छ सुजल, गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी। सुजल, जल जीवन मिशन ने समय बदल दिया। जल जीवन मिशन, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, इसके तहत हर जल हर घर जल कार्यक्रम ने देश के करोड़ों ग्रामीणों घरों में नल से जल पहुंचाना शुरू कर दिया।
0: हाँ, अब महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चियों को पानी ढोने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ता।
1: लेकिन ये सब आसान नहीं था। कई लोग सोचते हैं कि जल जीवन मिशन का काम जो है वो बस पाइप बिछाने का काम होता है, जबकि सच्चाई यह है कि हर परिवार के लिए रोज साफ, सुरक्षित और पर्याप्त पानी पहुंचाने का संकल्प है।
0: जो पानी आज नल में दिख रहा है वह अपने आप नहीं आया। इसके पीछे पूरे देश की मेहनत और लोगों की भागीदारी है। अब जल जीवन मिशन 2.0 के तहत इसे 2028 तक बढ़ाया गया है ताकि हर घर तक पानी पहुंचे और हर गांव में जल योजनाओं का बेहतर संचालन, रख रखाव एवं सतत सेवा सुनिश्चित की जा सके। राहें खुद ब खुद बनेगी, तुम बस कदम बढ़ाते चलो, होगा हर काम आसान, तुम मन में

0: जगाते चलो।
1: सही कहा, होगा आसान हर वो काम जो अब तक तुमको भारी था। जीत उसी की होती है जिसकी पूरी तैयारी थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश के हर मुश्किल में काम किया, कहीं रेगिस्तान की गर्मी में, कहीं पहाड़ों में, आज हर घर और हर बस्ती तक नल से जल पहुंचाने का काम चल रहा है।
0: अरे क्या हुआ?
1: ये सब सुनकर किसी के भी आंखों में आंसू आ जाएं। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, देश की लाखों महिलाओं और बच्चियों के सिर से आज पानी ढोने का बोझ उतर गया। अच्छा नल से जल मिलने के बाद हमारे गांव में और क्या बदलाव आया?
0: पहले पानी पी लूं, फिर बताता हूँ। देखो स्वच्छिका, सिर्फ पानी ही नहीं आया, गांव के लोग भी इस योजना से जुड़े हैं। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से लोग मिलकर इसे संभाल रहे हैं और हमारी माताएं बहनें इसमें आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभा रही हैं।
1: ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, ये क्या होता है, जरा अच्छे से समझाओ ना।
0: ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति यानी पानी समिति के लोग, जिनका गठन हर गांव में होता है और इस समिति में आदि महिलाओं का होना बहुत जरूरी होता है।
1: पर इनका कार्य क्या होता है?
0: चलो यह भी बता देता हूँ। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति यानी पानी समिति का काम है ये सुनिश्चित करना कि गांव में पानी की सप्लाई ठीक से चलती रहे। नल जल मित्र ऑपरेटर की मदद से मोटर, पाइपलाइन एवं टंकी का रख रखाव कराया जाए, लीकेज ठीक किए जाए, पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच हो, और हाँ, पानी के इस्तेमाल के लिए जो शुल्क है उसके लिए लोगों को जागरूक करना।
1: बाप रे, ये सब गांव वाले खुद करेंगे?
0: अरे नहीं, ये सब करने के लिए पंचायत इनकी मदद करती है, साथ में वे कुछ कार्यों को करने के लिए स्वयं सहायता समूह की दीदी की भी मदद ले सकते हैं।
1: अच्छा, और पंचायत स्तर पर सरपंच, प्रधान, मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि के क्या काम होते हैं?
0: पंचायत स्तर पर सरपंच, प्रधान, मुखिया या फिर पंचायत प्रतिनिधि पानी समिति के साथ मिलकर योजना का रख रखाव करते हैं ताकि लोगों का भरोसा बना रहे।
1: अरे वाह, अब समुदाय की भूमिका भी बता दो सुजल कुमार।
0: स्वच्छिका, समुदाय सबसे अहम कड़ी रहती है। उनके साथ के बिना किसी भी योजना का रख रखाव और उनकी सततता कायम रखना बहुत मुश्किल है। इस योजना के लिए समुदाय और हर व्यक्ति का कर्तव्य है पानी समिति एवं पंचायत के साथ मिलकर कार्य करना, समय पर जल सेवा शुल्क देना, पानी बर्बाद ना करना, पानी के स्रोतों की रक्षा करना एवं इसे बनाए रखने के लिए जल के पुनः भरण यानी रिचार्ज पर काम करना, शिकायत छिपाना नहीं तुरंत बताना और सरकार के साथ मिलकर समाधान भी ढूंढना।
1: जब हर व्यक्ति कहे यह योजना मेरी है तभी योजना टिकाऊ होती है सुजल।
0: और इसलिए अब योजनाओं की जानकारी जैसे पानी की आपूर्ति, गुणवत्ता एवं रख रखाव को सार्वजनिक करने पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति जानकारी के आधार पर अपनी भूमिका निभा सके।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, पर योजना में कुछ खराबी भी आती होगी, उसे कैसे ठीक करते हैं?
0: ऐसी स्थिति में ग्रामीण अपने गाँव के सरपंच यानी पानी समिति के सदस्यों को बता सकते हैं कि इसे चलाने के लिए एक ऑपरेटर भी होता है जिसे हम नल जल मित्र भी कहते हैं। वो भी छोटी मोटी समस्या का समाधान कर देता है। बड़ी समस्या के लिए जिले स्तर पर स्थित DTU से संपर्क कर उसकी मदद ले सकते हैं।
1: यह तो बहुत अच्छी बात है।
0: इस मिशन के लिए अब तक क्या क्या प्रगति हुई है, JJM 2.0 में क्या खास है, हमें बताएंगे श्री कमल किशोर सोन, जो कि जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक हैं। चलिए उनको सुनते हैं।
2: नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। रेडियो कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी के माध्यम से आप सभी से जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चूंकि आज का यह एपिसोड

0: मिशन पर केंद्रित है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। साथियों, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि भारत के हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर घर तक और गांव के आंगनवाड़ी व स्कूल जैसे संस्थानों तक पाइपलाइन के माध्यम से नल से साफ और सुरक्षित पीने का पानी पहुंचे। पिछले कुछ वर्षों में हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़े हैं। आज मिशन उस चरण में पहुंच चुका है जहां कई गांवों और पंचायतों में योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अब उनका संचालन और रखरखाव सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इसी क्रम में मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन का दूसरा चरण लागू हो चुका है, जिसके अंतर्गत मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। इस नए चरण में जल जीवन मिशन अब नए सुधारों के साथ संचालित हो रहा है। अब हमारा ध्यान सिर्फ हर घर तक नल से जल पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि यह सेवा नियमित, सुरक्षित और लंबे समय तक सतत रूप से बनी रहे। इसके लिए गांव के लोगों की भूमिका को और मजबूत किया जा रहा है। जल सेवा आकलन के माध्यम से गांव के लोग खुद अपनी योजना की समीक्षा करते हैं एवं पानी की उपलब्धता, गुणवत्ता और सेवा की स्थिति को समझते हैं। इसके बाद जिला स्तर की तकनीकी टीम यानी DTU डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल यूनिट की मदद से सेवा में सुधार की योजना तैयार करती है। DTU पंचायतों को रखरखाव एवं मरम्मत के कार्यों में भी मदद करता है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत जन भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु संवाद कार्यक्रम के माध्यम से दो स्तरों पर सीख और अनुभव साझा किए जा रहे हैं। सुजल ग्राम पेयजल संवाद में ग्राम और ग्राम पंचायत अपनी अच्छी पहल और उपलब्धियां राष्ट्रीय स्तर तक साझा करते हैं, जिससे उन्हें पहचान मिलती है, उनके कार्यों को सराहा जाता है और देश के दूसरे गांव भी उनसे सीखते हैं। वहीं DC और DM पेयजल संवाद एक ऐसा मंच है जहां जिला प्रशासन अपने जिले के सफल उदाहरण और अनुभव साझा करता है, जिससे पेयजल से जुड़े प्रभावी समाधान और श्रेष्ठ कार्य पूरे जिले के साथ साथ अन्य क्षेत्रों तक भी पहुंचते हैं। वहीं DC DM पेयजल संवाद में जिला प्रशासन अपने जिले के सफल उदाहरण और अनुभव साझा करते हैं, जिससे पेयजल संबंधित जरूरी समाधान और बेहतर कार्यों को पूरे जिले और अन्य स्थानों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, जल जीवन मिशन केवल पाइप और टंकी लगाने की योजना नहीं है, बल्कि यह जन भागीदारी पर आधारित एक जन आंदोलन है। जब गांव खुद अपनी जल व्यवस्था को समझकर संभालता है, तभी यह लंबे समय तक टिकाऊ रहती है। इसलिए जल स्रोतों की सुरक्षा, गुणवत्ता बनाए रखना और समुदाय की भागीदारी इस मिशन के प्रमुख आधार हैं, ताकि पानी आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित बना रहे।
1: स्वच्छिका, जैसा मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन ने बताया कि जल जीवन मिशन 2.0 में कई सुधार लाए गए हैं, जिनमें पानी की सेवा को नियमित, टिकाऊ एवं बेहतर तरीके से चलाया जा सके। सोचो, अभी तो देश के 15 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल आ रहा है। जब देश के सारे घरों में नल से जल आने लगेगा तो वो भी नियमित, सतत, तो लोगों की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी ना।
2: हाँ, लेकिन नल से जल आएगा, उसको स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सब गांव वालों को ही तो निभानी होगी, ताकि कोई बीमार ना पड़े। कौन हंसा? सुजल, तुमने सुना?
1: ये वही है दूसिका, तुम्हारी बातें सुनकर हंस रही है।
2: मैंने कोई मजाक की बात की है क्या?
1: अभी अभी तुमने क्या कहा?
2: क्या कहा?
1: यही कि जल को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी लोगों की भी होगी।
2: तुम बार बार हंस क्यों रही हो?
3: तुम्हारे भोलेपन पर हंस रही हूँ। अगर तुम लोगों को साफ पानी की परख होती, उसका महत्व पता होता, तो मैं कब की यहाँ से दूर जा चुकी होती। तुम लोग सोचते हो कि बस पानी आएगा तो सब ठीक, अगर पानी गंदा हो जाए तो बीमारी, अस्पताल, सब मेरी वजह से होगा। मैं दूषिका, पानी प्रदूषण की रानी।
1: और पानी प्रदूषण की रानी, अब तुम्हारा दौर खत्म।

0: इस बार हम तेरी एक नहीं चलने देंगे।
1: हमने ठान लिया है कि लोगों को साफ पानी का महत्व भी बताएंगे।
2: तो क्या अब तक लोगों के घर पानी नहीं आता था? ऐसा क्या बदलाव आ गया है?
1: हाँ हाँ बिल्कुल आता था, लेकिन जल जीवन मिशन में यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर पेयजल स्कीम में स्रोत से आने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए डिसइंफेक्शन यूनिट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था हो। क्लोरिनेशन, फिल्टरिंग एवं अन्य ट्रीटमेंट प्रक्रियाओं के माध्यम से साफ एवं सुरक्षित पानी की आपूर्ति हो सके।
2: पर पानी तो बाद में भी गंदा हो सकता है, इसे लोगों को कैसे पता चलेगा?
1: तुम्हें पता नहीं है, जल जीवन मिशन में पानी की गुणवत्ता की जांच बहुत जरूरी हिस्सा है। तुम्हें पता है इसके लिए हर गांव में 5 महिलाएं एवं दीदियों को फील्ड टेस्टिंग किट से पानी की गुणवत्ता की जांच करना सिखाया जाता है। जरूरत पड़ने पर सैंपल या नमूना को लैब में भी भेजकर सत्यापित किया जाता है। जीजेएम के नए चरण में ऐसी महिलाएं दीदी समूह को अब सुजलाम शक्ति के नाम दिया जा गया है।
2: स्वच्छिका मैडम और सुजल भाई साहब, लोग तुमसे ज्यादा मेरी बात मानते हैं। तुम लोग तो उन्हें कठिन कठिन टास्क देते हो, ये धो वो साफ करो, ऐसा रखो वैसा करो। मैं उन्हें कहती हूँ छोड़ो हटाओ फेंको रहने दो, कोई चिंता मत करो।
0: लेकिन अब सब हमारी बात सुनेंगे। हम लोगों को बता रहे हैं कि अपनी छोटी छोटी आदतों से हम पानी के स्रोत को साफ रख सकते हैं,
1: क्योंकि शुद्ध पेयजल हमारी बीमारियों से बचाता है और बच्चों को स्वस्थ एवं मजबूत बनाता है और हर घर का खर्च भी कम करता है। जब परिवार स्वस्थ रहता है तो दवा एवं इलाज पर होने वाले खर्च बचता है, जिसमें पैसे बच्चों की पढ़ाई पोषण एवं घर की जरूरतों पर खर्च किए जा सकते हैं। इसलिए दूसिका महोदया जी, अब तुम अपना बूढ़िया बिस्तर समेटो।
2: ये जल जीवन मिशन तो सबको जागरूक बना रहा है, कोई बात नहीं, अभी जा रही हूँ लेकिन फिर आऊंगी। जिस गांव के लोग कमजोर पड़ेंगे वहाँ फिर पहुँच जाऊंगी मैं, देखना वो मुझे जरूर मौका देंगे।
1: जाओ जाओ जाओ, तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है।
3: चलो चलो सुने हम रेडियो की सुबानी, सच सुजल गांव की एक अनोखी कहानी।
4: हम पानी बना नहीं सकते, सिर्फ बचा सकते हैं। इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है, पानी चाहिए तो उसे बचाइए। लीकेज रोकें, पानी बचाएं। क्या आप जानते हैं मामूली लीकेज से ही हर महीने 1,000 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। यदि एक नल से हर मिनट 45 बूंद पानी टपकता है तो 3 घंटे में 1 लीटर से ज्यादा पानी बह जाता है। पानी की हर बूंद मायने रखती है। जल बचाएं, भविष्य बनाएं।
5: स्वच्छ सुजल, स्वच्छ सुजल, यही है भारत का नारा न्यारा।
4: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।
0: सुजल, क्या सचमुच लोग हमसे ज्यादा दूषिका की बात मानते हैं?
1: नहीं स्वच्छिका, थोड़ी सी लापरवाही और आलस के कारण हम अपने पानी के स्रोतों को गंदा कर लेते हैं और दूषिका की जीत हो जाती है।
0: अच्छा, तुमने बताया था कि जल जीवन मिशन में निर्माण के समय मुख्यतः सरकार और विभाग काम करते हैं समुदाय के साथ मिलकर, लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद ये योजना चलाने की जिम्मेदारी गाँव के लोग कैसे संभालेंगे? योजना समुदाय व पंचायत को कैसे और कब दी जाएगी?
1: ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। निर्माण पूरा होने के बाद कुछ दिन स्कीम को जांचने के लिए ट्रायल रन किया जाता है ताकि उसमें कोई कमी ना रह जाए। इसे कमीशनिंग कहते हैं। सब कुछ सही पाने के बाद गांव स्तर की योजनाओं को पंचायत एवं समुदाय को सौंप दी जाती है और यह करने के लिए सरकार समुदाय के साथ मिलकर इस अवसर को जल दर्पण दिवस के रूप में मनाती है। यह ट्रायल रन कम से कम 15 दिन तक का होना जरूरी है।
0: जल अर्पण दिवस, बड़ा प्यारा नाम है, इसका मतलब क्या है?
1: ये जानकारी हमें जल जीवन में

0: मिशन के मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन दे रहे हैं।
1: मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। चलिए आज की इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि जल अर्पण दिवस क्या है। 73वें संविधान संशोधन और जन भागीदारी की भावना के अनुरूप जल जीवन मिशन में जब कोई जल आपूर्ति योजना पूरी होती है तो उसे संचालन और रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत और समुदाय को सौंपा जाता है। इसी जिम्मेदारी को उत्सव के रूप में स्वीकार करने के लिए जल अर्पण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जल अर्पण दिवस उस गांव के लिए एक ऐतिहासिक दिन होता है जब सरकार और विभाग जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनी ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति योजनाओं को औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और समुदाय को सौंपते हैं। इस दिन गांव का समुदाय अपनी जल व्यवस्था को गर्व, जिम्मेदारी और अपनापन के साथ स्वीकार करता है और उसे संभालने व सुरक्षित रखने का सामूहिक संकल्प लेता है।
0: जल अर्पण दिवस क्या अब समझ में आ गया है? ये जानकारी जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन ने दी गई।
2: हाँ बिल्कुल, इस दिन का संदेश ये है कि अब पानी सिर्फ सरकार की योजना नहीं, यह पूरे गांव की जिम्मेदारी है। सब मिलकर इसकी देखभाल करेंगे आज, कल और आने वाले वर्षों तक। लेकिन ये बताओ, यह कैसे जानेंगे कि योजना अब हैंडओवर के लिए तैयार है? क्या क्या करना होगा?
0: योजना को गांव को सौंपने से पहले यह देखा जाता है कि पानी समिति बनी है या नहीं। क्या योजना को कुछ दिन चलाकर जांचा जाए पानी सही है या नहीं, इसकी जांच हो चुकी है। नल जल मित्र एवं समिति को काम की जानकारी दी गई है, पूरे सिस्टम की जमीनी जांच हो गई है और सब जानकारी गांव में खुले में लगाई गई है। जल चौपाल करके गांव वालों को जोड़ा गया है और जल स्रोतों की सफाई भी हो चुकी है। जब यह सब पूरा होता है तभी योजना गांव में सौंपी जाती है।
2: अरे वाह, ये तो बताओ इसे कैसे मनाएंगे?
0: इसे एक सामूहिक उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। इसे हम अपनी स्थानीय लोक परंपरा के हिसाब से मना सकते हैं। सोर्स टू टैप समुदाय के साथ मिलकर ट्रांसेक्ट वॉक यानी जल परिक्रमा की जाए, गांव की स्कीम का नक्शा एवं जल गुणवत्ता रिपोर्ट सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित की जाए और जल योजना संरचनाओं पर यह पवित्र धागा बांधकर, जल बंधन धागा बांधकर सुरक्षा का संकल्प। हम अपनी योजना एवं जल स्रोत की रक्षा करेंगे, साथ ही साथ में जल संरक्षण की आदतों को अपनाएंगे और उपाय भी करेंगे। इसी दिन योजना से जुड़ी सारे दस्तावेज पंचायत को हैंडओवर भी किए जाएंगे। ये ध्यान रहे इसे अपनी स्थानीय संस्कृति के अनुसार मनाया जाए। इस दिन हर गांव को अपने माननीय सांसद एवं स्थानीय मंत्री, अन्य जनप्रतिनिधि एवं प्रवासी ग्रामीणों को जरूर बुलाना चाहिए। इसके अलावा अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम जल उत्सव भी मना रहे हैं।
2: जल उत्सव? ये जल उत्सव आखिर है क्या?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जल उत्सव को 3 स्तर के पर मनाने का निर्णय लिया है ताकि हर व्यक्ति इससे जुड़ सके।
2: 3 स्तर, जरा आसान भाषा में समझाओ ना।
0: हाँ बिल्कुल, सबसे पहला है राष्ट्रीय स्तर जो जल महोत्सव। यह हर साल 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से 22 मार्च विश्व जल दिवस तक मनाया जाता है।
2: अच्छा, यानी पूरे देश में एक साथ पानी को लेकर जागरूकता और भागीदारी का माहौल बने।
0: बिल्कुल सही, इसमें देश भर में कार्यक्रम, संवाद, सम्मान समारोह और जन भागीदारी का आयोजन होते हैं ताकि पानी को लेकर सामूहिक जन जागरूकता का माहौल बने।
2: और दूसरा स्तर कौन सा है?
0: दूसरा स्तर है राज्य स्तर का, राज्य जल उत्सव यानी नदी उत्सव। इसमें हर राज्य अपनी

0: नदियां जल परंपराओं एवं स्थानीय संस्कृति के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करता है।
1: मतलब हर राज्य अपने हिसाब से अपनी पहचान के साथ जल उत्सव मनाता है।
0: हाँ, जैसे कहीं नदी के किनारे कार्यक्रम, कहीं जल संरक्षण अभियान, तो कहीं स्थानीय त्योहारों के साथ इसे जोड़ा जाता है।
1: और तीसरा स्तर?
0: तीसरा तो और सबसे अहम है, गांव एवं पंचायत स्तर पर लोक जल उत्सव।
1: यह तो सबसे जरूरी है, क्योंकि असली काम तो गांव में ही होता है।
0: सही कहा, ऐसे जल उत्सव में जल चौपाल भी होती है। गांव के लोग मिलकर अपनी जल योजना की समीक्षा करते हैं और यदि कोई कमी हो तो उसे ठीक करने पर ठीक कर अपनी सेवा को और बेहतर बनाते हैं। पानी के स्रोतों की सफाई की जाती है और सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि योजना को टिकाऊ बनाएंगे।
1: मतलब तीस से लेकर गांव तक हर स्तर पर पानी को एक उत्सव, एक जिम्मेदारी और एक जन भागीदारी के रूप में जोड़ा गया है।
0: बिल्कुल, जल उत्सव का मतलब सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि यह जन भागीदारी से जल की जिम्मेदारी।
1: बिल्कुल, और हमने इसके लिए जल अर्पण दिवस के दौरान सम्मिलित गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन जी और राजगढ़ के सांसद श्री रोडमल नगर जी से बात की। आइए जाने क्या कहते हैं वे इसके बारे में।
2: धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी, धन्यवाद जल शक्ति मंत्रालय सी आर पाटिल साहब, धन्यवाद पूज्य योगी महाराज। एक ऐसी सोच जो मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ, बिकॉज मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ। पानी जो आने वाले समय पर प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि कम होता जाएगा, खत्म होता जाएगा धरती पर, अब उसको बचाना, उसको संजो करके रखना और वहां पर पानी की व्यवस्था, हर घर में नल से जल देने की व्यवस्था, ये बहुत बड़ी सोच थी। ये इम्पॉसिबल जैसा था, इम्पॉसिबल जैसा, लेकिन मैंने इसको पॉसिबल होते हुए अपने 6 संसदीय क्षेत्र में देखा। 2.25 लाख लीटर की टंकी लगी, ऑटो मशीन पर पानी हर घर में आ रहा है, कितनी खुशी थी। ये खुशी का कोई मापदंड नहीं।
3: जल जीवन मिशन का जो काम है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, हर घर नल से जल, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत सराहना करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और राजगढ़ जिले में भी 1331 के लगभग गांव ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत उन्होंने लिए हैं। ये ठीक है, कुछ व्यवधान रहे, उसकी वजह से कुछ लेट लतीफ हुई है, लेकिन बहुत ही प्रशंसनीय है। कुंडीबे गांव में तो 24x7 24 घंटे नल से जल प्रदाय हो रहा है और वहां की जो पद्धति को हमने देखा और वहां से जो हमने सीख ली वो भी बड़ी अनुकरणीय है। सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि नल की टोटी निकाल देते हैं तो पानी व्यर्थ में बहता रहता है, लेकिन कुंडीबे ग्राम पंचायत के लोगों की मैं सराहना करना चाहता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। हर नल में उन्होंने टोटी लगा रखी है और मैं एक दिन गांव में गया, मैंने टोटी चालू कर दी और लोगों की तरफ देखा तो लोग हंसने लगे। मैंने कहा बस मैं यही चाहता था कि टोटी बंद रहनी चाहिए और ये आप अपनी तरफ से हमारे साथ में खड़े हैं। ये बड़ा ही अच्छा एक वातावरण था, बड़ा अच्छा क्षण था। और अच्छा है जल जीवन मिशन के माध्यम से जैसा कुंडीबे हुआ है, जैसे अन्य गांव भी हो और जल्दी से जल्दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है हर घर नल से जल, इसको देने में हम सफल होंगे। जल जीवन मिशन का काम है गांव तक पानी पहुंचाना, लेकिन गांव का वितरण करना है तो ग्राम पंचायत का ही काम है, इसके लिए जन संगठनों को आगे आना पड़ेगा। देखिए जो काम करता है वहां गलतियां होती है, चूक भी होती है, कमियां भी रहती है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का और हम सब आपके साथ हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन जी और राजगढ़ मध्य प्रदेश के सांसद से बात अभी हमने अपने श्रोताओं को सुनवाई, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। सुजल, ऐसा लगता है जल अर्पण दिवस और जल उत्सव संस्कृति और जिम्मेदारी का संगम है। इसके अलावा आओ अब ये जानते हैं कि जल जीवन मिशन में कौन कौन सी डिजिटल प्रणालियां विकसित की है।
5: पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति,

0: और समुदाय अपनी पेयजल व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ सकें एवं चला सकें, इसके लिए भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियां विकसित की है। उसमें सबसे प्रमुख है पंचायत डैशबोर्ड। पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पंचायत डैशबोर्ड बनाया गया है। इसके माध्यम से सरपंच और मुखिया जी योजनाओं की प्रगति, बनी हुई जल संरचनाएं, पानी की गुणवत्ता और प्रशिक्षण गतिविधियों की जानकारी देख सकते हैं और अपनी राय व सुझाव भी दे सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है सुजलाम डेटाबेस। इसके माध्यम से हर पाइप पेयजल योजना की जानकारी स्रोत से लेकर नल तक एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जलापूर्ति योजना और प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट पहचान यानी सुजल गांव आईडी प्रदान की जा रही है, जिससे योजना की निगरानी, प्रबंधन और सेवा वितरण को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा सके। इसके माध्यम से आप अपने गांव की पेयजल योजना की जानकारी जल स्रोत से लेकर नल तक योजना के सभी घटकों को देख पाएंगे। योजना से जुड़ी अन्य आवश्यक जानकारियां भी इसमें उपलब्ध होंगी। तीसरा महत्वपूर्ण पहल है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसे हम निर्णय सहयोग प्रणाली कहते हैं, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि पानी रहेगा तभी हम उसका उपयोग कर पाएंगे। हर योजना का भविष्य उसके जल स्रोत की सुरक्षा पर निर्भर करता है। यह प्रणाली हमारे परंपरागत स्थानीय ज्ञान, जो सदियों से जल के साथ हमारे अनुभव से विकसित हुआ है, को आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़ती है। इस समन्वय से हमें बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है, जिससे हम अपने जल स्रोतों को रिचार्ज कर सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि आज नल तक पहुंचने वाला पानी कल और आने वाली पीढ़ियों तक भी बना रहे।
1: तैयारी पक्की, जिम्मेदारी सबकी। हम पानी बचाएंगे, योजना चलाएंगे, गांव का जल भविष्य बनाएंगे।
2: मैं आज समझ गई, सबसे ताकतवर गांव वो है जो पानी की रक्षा करता है। अब मेरा क्या होगा?
0: मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। साथियों, ग्राम पंचायतों को 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाले टाइड ग्रांट जल एवं स्वच्छता के कार्यों के लिए निर्धारित है। इस राशि का उपयोग गांव की पेयजल योजनाओं की देखभाल, मरम्मती, जल गुणवत्ता जांच, जल संरक्षण और लोक जल उत्सव, जन जागरूकता कार्यक्रम जैसे गतिविधियों में किया जा सकता है। इससे पेयजल योजनाएं लंबे समय तक सुचारू रूप से चलती रहेंगी और ग्राम पंचायत के सहयोग से लोगों को बेहतर पेयजल सेवा मिलती रहेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाइप जल आपूर्ति योजना से मिलने वाला साफ और सुरक्षित पीने का पानी केवल सुविधा नहीं है, बल्कि यह बेहतर स्वास्थ्य की बुनियाद है। इससे डायरिया, पीलिया और अन्य जल जनित बीमारियों में कमी आती है, बच्चों और गर्भवती माताओं का स्वास्थ्य सुधरता है और परिवारों का इलाज पर होने वाला खर्च भी घटता है। स्वस्थ परिवार मतलब कामकाज में कमी नहीं, आमदनी में नुकसान नहीं। इसलिए पाइप नल योजना के माध्यम से मिलने वाला साफ पानी गांव की तरक्की की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, चूंकि मानसून अपने चरम पर है और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि वर्षा जल का एक एक बूंद हमें बचाना चाहिए, मेरा सबसे आग्रह है कि पानी का समझदारी से उपयोग करें और बर्बादी से बचें। साथ ही जल संचय, जन भागीदारी, कैच द रेन अभियान के तहत वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों के रिचार्ज की तैयारी करें, ताकि हमारे पेयजल स्रोत साल भर टिकाऊ बने रहें। आइए हम सब मिलकर सरकार और समुदाय की साझा जिम्मेदारी निभाएं, अपनी पाइप पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखें, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि हर घर तक सुरक्षित और नियमित पानी पहुंचता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

0: श्रोताओं, अब बारी आती है हमारे पिछले एपिसोड के सवाल और जवाब की, कि कौन से वे श्रोता हैं जिन्होंने पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब दिया है। तो जवाब है, जुगियाई से आया हुआ है सतीश कुमार साहू जी का जवाब है। तो पहले हम सवाल सुन लेते हैं। सुजल कुमार, क्या एक बार सवाल पढ़ेंगे?
1: बिल्कुल, पिछले एपिसोड में हमने सवाल जो पूछा था वो पूछा था कि गीला कचरा और सूखा कचरा की श्रेणी में किन किन चीजों को रखा जाता है और इन्हें रखने के लिए किस रंग के कूड़ेदान का उपयोग किया जाता है।
0: तो पहला और सही जवाब हमारा आया हुआ है कि श्रेणी, गीला और सूखा कचरा की श्रेणी क्या होती है। तो गीला कचरा जो होता है वो बचा हुआ खाना, फल और सब्जियों के छिलके, सड़े हुए फल और फूल, पत्तियां और बागवानी का कचरा, ये हो गया हमारा गीला कचरा। और सूखा कचरा में आता है प्लास्टिक की थैलियां और बोतलें, कागज और गत्ते, धातु के डिब्बे, कांच के टुकड़े। अब हम बात करते हैं कि किस रंग के डिब्बे में इन्हें डालना चाहिए। तो सूखा और सूखे कचड़े के लिए हरे रंग का डस्टबिन और गीले कचड़े के लिए नीले रंग का डस्टबिन। तो सतीश जी, आपका जवाब बहुत सही है और सही जवाब आपने दिया है। इसी तरह से ध्यान से आप हमारे हर एपिसोड को सुनते रहिए और हर एपिसोड में हम आप सभी के नाम लेते रहेंगे।
1: और इस अंक का सवाल है, क्या होता है जल अर्पण दिवस, क्या आपके गांव में ये मनाया जाता है?
0: अरे सुजल, अगले अंक के बारे में भी तो कुछ बताओ।
1: अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे स्वच्छ भारत मिशन देश के हर गांव को स्वच्छ और एक गांव को ODF प्लस ग्राम बनाने हेतु क्या प्रयास कर रहा है और क्या रहेगी इसकी रणनीति। तो दोस्तों, बने रहिए आपके हमारे साथ और सुनिए स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।
0: अगले अंक तक आप सभी को हमारा नमस्कार। इसी तरह से सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो, अपनी बातें।
1: नमस्कार।

0: मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा संचालित, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित
1: कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम खेत खलियान। खेत खलियान कार्यक्रम में आज अपन बात कर रहे हैं मिर्च की खेती की। दोस्तों, मिर्च की खेती में अपन जान है कि मिर्च की खेती करबे के लाने कौन सी जलवायु और मृदा की आवश्यकता है, और मिर्च की वे उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, मिर्च की पौध तैयार कैसे करें, और नर्सरी प्रबंधन और बीज की मात्रा, रोपाई की तकनीकी एवं समय, ये सब बातें करें आज के कार्यक्रम खेत खलियान में। सो ये बातें करबे के संगे संगे पहला तो अपन एक बढ़िया से गीत को सुन लेते और गीत को आनंद लेते हैं। सो आप सुनते हैं गीत को, ये गा रहे हैं रामाधीन आर और रेखा राज जी।

0: तई पनिया दारी उतई कर धनिया है भर भी गई पनिया दारी उतई कर धनिया है भर भी गई पनिया दारी उतई कर धनिया है भर भी गई पनिया दारी उतई कर धनिया है भर भी गई पनिया
1: तो देखो दोस्तों जो अपन ने गीत सुन लो गीत को आनंद लाओ है गीत खुंगा रहे थे रेखा राजीव और रामाधीन आज जी। अब अपन चले थे कार्यक्रम में आगे और बात करते हैं मिर्च की खेती की। सो साथियों मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल में से एक है। वर्तमान में भारत में 7,92,000 हेक्टेयर में मिर्च की खेती की जा रही है जिसमें 12,23,000 टन उत्पादन प्राप्त होता है। वर्ष 2010 और 11 में भारत में आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र उड़ीसा तमिलनाडु मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान में प्रमुख मिर्च उत्पादन राज्य हैं जिनसे कुल उत्पादन का 80% भाग प्राप्त होता है। तो दोस्तों अब बात करें एक संग जलवायु और मृदा की। तो मिर्च की खेती विविध प्रकार की मिट्टियों में जिसमें कि कार्बनिक पदार्थ प्राप्त एवं जल निकास की उचित सुविधा हो में सफलतापूर्वक की जाती है। मिर्च की फसल

भी बर्मी सोल्स में भी उगाया जा सकता है। मिर्च की खेती के लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियम तापमान तथा गर्म आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है तथा फसल अवधि के 130 से 150 दिन के अवधि में पाला नहीं पड़ना चाहिए। मिर्च की उन्नत किस्में काशी अनमोल किस्म जी की उपज है 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, काशी विश्वनाथ और ई की उपज है 220 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जवाहर मिर्च 283 ई की उपज है 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जवाहर मिर्च 218 ई की उपज है 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, अर्का सुफल मिर्च और ई की उपज है 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा संकर किस्म काशी अरली इसकी उपज है 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, काशी सुर्ख या काशी हरित ई की उपज है 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इन किस्मों का चयन करें और पब्लिक सेक्टर की HPH 1900 से 2680 उजाला तथा US 611 से 720 संकर किस्में की खेती की जा सकती है। मिर्च की पौध तैयार करना तथा नर्सरी प्रबंधन। सो दोस्तों, मिर्च की पौध तैयार करने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पर पर्याप्त मात्रा में धूप आती हो तथा बीजों की बुआई 3x1 मीटर आकार की भूमि से 20 सेंटीमीटर ऊंची उठी क्यारियों में करें। मिर्च की पौधशाला की तैयारी के समय 2 से 3 टोकरी बर्मी कंपोस्ट या पूर्णतया सड़ी गोबर खाद, 50 ग्राम पोटेट दवा क्यारी मिट्टी में मिलाएं। बुआई के एक दिन पूर्व कार्बंडाजिम दवा 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से क्यारी में डाला करें। अगले दिन क्यारी में 5 सेंटीमीटर दूरी पर 0 से 5.1 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाकर बीज की बुआई करें। बीज की मात्रा, दोस्तों बात करें बीज की मात्रा की, तो मिर्च की ओपी किस्मों के 500 ग्राम तथा शंकर हाइब्रिड किस्मों के 200 से 225 ग्राम बीज की मात्रा 1 हेक्टेयर क्षेत्र की नर्सरी तैयार करने के लिए पर्याप्त होती है। रोपाई की तकनीकी एवं समय। मिर्च की रोपाई वर्षा, शरद, ग्रीष्म तीनों मौसम में की जा सकती है, परंतु मिर्च की मुख्य फसल खरीफ जून अक्टूबर में तैयार की जाती है, जिसकी रोपाई जून जुलाई में, शरद ऋतु की फसल की रोपाई सितंबर अक्टूबर तथा ग्रीष्मकालीन फसल की रोपाई फरवरी मार्च में की जाती है। अब बात करें पोषक तत्व एवं प्रबंधन तकनीक। मिर्च की फसल में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करें। सामान्यतः 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 200 से 250 क्विंटल गोबर की पूर्णतः सड़ी हुई खाद का 50 क्विंटल बर्मी कंपोस्ट खेत की तैयारी के समय मिलाएं। नत्रजन 120 से 150 किलो, फास्फोरस 60 किलो तथा पोटास 80 किलो का प्रयोग करें। अब बात करें मिर्च में मलिंग के प्रयोग की तकनीकी। मिर्च फसल की आधुनिक खेती में सिंचाई के लिए ड्रिप पद्धति लगाई जा रही है तथा खरपतवार नियंत्रण के लिए 30 माइक्रो मोटाई वाली अल्ट्रावायलेट रोधी प्लास्टिक मल्चिंग सीट का प्रयोग किया जाता है, जिससे खरपतवार प्रबंधन के समय और साथ साथ सिंचाई जल की मात्रा भी कम रहती है। मिर्च में फर्टिलाइजेशन तकनीकी द्वारा पोषण तत्व प्रबंधन। मिर्च के पौधे जिनको फरवरी में उठी हुई क्यारियों पर लगाया गया, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था का उपयोग करें तथा जल विलेय उर्वरकों जैसे 19-19-19 को सिंचाई जल के साथ ड्रिप में देने से उर्वरक की बचत के साथ साथ उसकी उपयोग

रोग क्षमता में भी वृद्धि होती है तथा पौधों को आवश्यकता अनुसार एवं शीघ्र पोषक तत्व उपलब्ध होने से उपज तथा गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होती है। अब बात करें मिर्च में पादप वृद्धि हार्मोन्स का प्रयोग। मिर्च की फसल में प्लेनोफिक्स 10 ppm का पुष्पन के समय तथा उसके 3 सप्ताह बाद छिड़काव करने से शाखाओं की संख्या में वृद्धि होती है एवं फल अधिक लगते हैं तथा रोपाई के 18 एवं 43 दिन के बाद ट्राइकेटिनाल 1 ppm की ड्रेसिंग करने से पौधों की अच्छी वृद्धि होती है। जिब्रेलिक एसिड 10 से 100 ppm सांद्रता को घोल के फल लगने के बाद छिड़काव करने से फल ज्यादा लगते हैं। मिर्च के महत्वपूर्ण कीट एवं प्रबंधन तकनीक। जो कीट हैं वो है थ्रिप्स। इनके लक्षण होते हैं, वैज्ञानिक भाषा में इसे सिट्रोथ्रिस्ट डोरसेल्स हुए कहते हैं। छोटी अवस्था में ही कीट पौधों की पत्तियां एवं अन्य मुलायम भागों से रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्तियां ऊपर की ओर मुड़कर नाव के समान हो जाती हैं। अब इसकी रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय हैं। बुआई के पूर्व थायोमिथियम 5 ग्राम प्रति किलो बीज दर से बीज उपचार करें और नीम बीज अर्का का 4% का छिड़काव करें। एक संगे रासायनिक नियंत्रण के अंतर्गत फिरपोनिल 5% SC 1.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और एस्टाइमिपिरिड 0.2 ग्राम 1 लीटर या इमिडाइलोपिरिड 0.3 ग्राम 1 लीटर या थायोमिथिजियम 0.3 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और एक संगे बात करें दूसरे सफ़ेद कीट की, जो सफ़ेद मक्खी है। इस कीट का वैज्ञानिक नाम बेमिसिया तपेकाई है, जिसके शिशु एवं वयस्क पत्तियों की निचली सतह पर चिपक कर रस चूसते हैं, जिसकी पत्तियां नीचे तरफ मुड़ जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए, नियंत्रण के लिए जो उपाय हैं वे हैं, 1, कीट की सतत निगरानी कर तथा संख्या के आधार पर डाइमिथिएट की 2 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। 2, अधिक प्रकोप की स्थिति में थाइमेथाइसम 25 WG की 5 ग्राम मात्रा में 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। 3, कीट है माइट और इनके लक्षण हैं। कीट का वैज्ञानिक नाम हेमिटायर यूनेमसलाइट बैंक है। यह बहुत ही छोटे कीट होते हैं जो पत्तियों की सतह से रस चूसते हैं, जिसमें पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। इसके उपाय हैं नियंत्रण के, वे हैं नीम की निबोली के रस का छिड़काव करें। 2 है डायकोफल 2.5 मिलीलीटर या ओमाइट 3 मिलीलीटर और 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अब दोस्तों बात करें मिर्च में खरपतवार प्रबंधन की। तो सामान्यतः मिर्च में पहली निराई गुड़ाई 20 से 25 तथा दूसरी निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन पश्चात करें या डोरा या कोल्पा चलाएं। हाथ से निराई या डोरा कोल्पा को ही प्राथमिकता दें, जिससे खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ मृदा नमी का भी संरक्षण होता है। मल्चिंग का प्रयोग करें। उपज उत्पादन क्विंटल हेक्टेयर में। वैज्ञानिक विधि से उन्नत किस्मों से 20 से 25 क्विंटल तथा संकर किस्मों से 30 से 40 क्विंटल उत्पादन प्राप्त होता है। मिर्च का भंडारण। हरी मिर्च के फलों को 7 से 10 से तापमान तथा 90 से 95% आर्द्रता पर 14 से 21 दिन तक भंडारित किया जा सकता है। भंडारण हवादार बैग में करें। लाल मिर्च

बीज को 3 से 10 दिन तक सूर्य की तेज धूप में सुखाकर 10% नमी पर भंडारण करें। तो देखो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में अपन ने जा बात करी है मिर्च की खेती की, और आप और कह रहे हो कि माता दिन भैया बिल्कुल खेती मिर्च की खेती के बारे में लगातार बात कर रहे हैं और मनोरंजन की तरफ कोनो ध्यान नहीं कर रहे। सो आओ मनोरंजन के लाने अपन सुनत ही बढ़िया से गीत को लेते हैं, गीत को आनंद। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। आओ सुन लेते हैं गीत को आनंद।

बोलत हो काय तुम लरन्या के कैरा जमानत नन्या। देखो कितनों बढ़िया गीत अपन सब जनों ने सुनो है, गीत को आनंद लो। दोस्तों जो गीत गा रहे थे रामाधीन आर और रेखा राज जी। अब यही गीत के संगे संगे आज के कार्यक्रम खेत खलियान को इतना ही समापन होवे को समय हो गयो है। सो अपने दोस्त माता दिन भैया खुदोई कार्यक्रम से जावे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात कार्यक्रम में यही बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इवीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और साथियों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन विधा देवी गीतन को और देवी गीतन को आनंद ले हैं। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। सो आओ दोस्तों, देर न करत भय कार्यक्रम को तो आगे बढ़ाऊ थे और कार्यक्रम में सुनते हैं इन प्यारे प्यारे से देवी गीतन को। सो आज सुनते हैं सबसे पहले जो गीत जी गा रहे हैं दिनेश सोनी जी।
1: दर्शन के लाने परसन से तरसन लगी।

होला पलक झलक दई श्री जय मिट गई ललक हमारी। पान बतासा ध्वजा नारियल, पान बतासा ध्वजा नारियल से भर गई चौतरिया। मैया खोल दो, मैया खोल दो जे द्वारे की किबरिया। मैया खोल दो द्वारे की किबरिया। दर्शन के लाने बरसन से, दर्शन के लाने बरसन से तरसन लगी नजरिया। मैया खोल दो, मैया खोल दो जे द्वारे की किबरिया।

देखो दोस्तों, जब कितना प्यारो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे दिनेश सोनी जी। आओ दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे सुनते हैं अगले साथियों की गायब है गीत को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, माँ के चरणों में अर्जी कुकू लगाएं। देखो कितना अच्छा जो गीत अपन सब जनन ने सुनो, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रही थी राजा बद्रेली जी। अब दोस्तों आओ सुनते हैं अगले साथी इनके गायब है गीत को।

बिल्कुल दोस्तों, कायर उठो केसर उठो फूलन को लंगरवा कायर उठो। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे भैया कृष्णकांत कुशवाहा जी। अब दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनाते हैं अगले साथियों के गाय भाई गीत को।

हो जा दयाल कृपाल महामाई अब की बीर। देखो दोस्तों कितनो बढ़िया जो गीत अपन सब जनन ने सुनो, देवी गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया गोविंदास कुशवाहा जी। सो आओ दोस्तों गोविंदास भैया जी के गीत के बाद फिर से सुनते हैं अगले साथी इनके गायब है गीत को।

बिल्कुल दोस्तों, मैया भक्त खड़े पुकारे दूर में हुमा। देखो दोस्तों, कितनों प्यारो जो भजन अपन सब जन ने सुनो, भजन को आनंद लो है। और दोस्तों ई भजन को जो गा रहे थे वे गा रहे थे किशोरी लाल कुशवाहा जी। अब दोस्तों ये गीत के बाद फिर से सुनते हैं अगले साथी इनके गायब है गीत को।

देखो दोस्तों, जो कितना बढ़िया गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया मनीराम मंचला जी। और अब मनीराम भैया मंचला जी के ये गीत के बाद हम आप सब जन को बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम से अपने दोस्त माता दीन भैया को जाबे को समय हो गया है। सो दोस्तों, हमें दो ही कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात है कार्यक्रम में ए बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: उतार दियो गगरी लाला दे होने गे तुम्हारे के हम आई सुनो
1: के गगरी तोरी भौजी जबई उतर है गगरी तोरी भौजी जबई

भई है, हम सबको आनंदी भई है, हम सबको आनंदी भई है। ऐसे पर खुशी रहे जा राज दुलारी, अरे खुशी रहे जा राज दुलारी, अरे कुल को है

बहू देखो जी के लड़का बिटिया तुम्हें राम ने दई है हम सबको आनंद भैये ऐसे तो कह रहे के गगरी उतार दिखाए

0: लेकिन हम और केवो है, तुम कह रही के दू बेने है, हमें नेग में जो नहीं जाने मालूम का जाने क्या वो है।
1: प्राणन से प्यारी हो जाई, ध्यान से सुनियो बात हमारी, ध्यान से सुनियो बात हमारी, का

0: बिटिया अभी सब खुश रहे और दोनों कुलन की शान बढ़ावे जो ही हम एकदम से नेग बिचाने और कछुरे जाने और
1: अरे खुशी रहे जाना दुलारो कुल को है उजियारो।

0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम शुभकल में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोता साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि शुभकल कार्यक्रम विगत कई वर्षों से हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, नए नए कार्यक्रम इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आते हैं। साथ में हम प्रयास करते हैं कि हमारे श्रोता साथियों को वो छोटी से छोटी जानकारी आप लोगों तक उपलब्ध कराई जाए, पहुंचाई जाए कार्यक्रम के माध्यम से, जो आपको लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और हम देख भी रहे हैं। हम कार्यक्रम को जब बनाते हैं तो सारे बिंदुओं को हम कोशिश करते हैं कि कवर करें। हमें लगता है कि अब चूंकि हम इस कार्यक्रम को मनाते मनाते अब हमें ऐसे विषय ढूंढना होगा, ऐसे विषय के लिए चयन करना होगा जो आपके लिए एकदम नए हो। हम कार्यक्रम के माध्यम से कई दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं कि शुभकल कार्यक्रम में अजीब का से जुड़ी बातचीत करते हैं, हम शुभकल कार्यक्रम में पर्यावरण से जुड़ी बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है श्रोता साथियों कि अब शुभकल कार्यक्रम में बदलाव की जरूरत है, अब उस शुभकल कार्यक्रम में कुछ ऐसा जाना चाहिए जो दिल को छूने वाला हो और आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो? तो इसके लिए साथियों आपके सुझाव का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि जब आप हमें बहुमूल्य सुझाव देंगे उस पर हम काम करेंगे, उस पर हम कार्यक्रम को बनाएंगे, फिर उस कार्यक्रम को आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी साथियों रहती है। तो हम कोशिश करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले अब समय में हम इस कार्यक्रम का बदलाव करेंगे और इस कार्यक्रम में बेहद जानकारी जो आपको हम उपलब्ध कराते हैं उससे और अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध कराएं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में चूंकि बहुत दिनों से चल रहा है कुछ नया करने के लिए, हम वही पर्यावरण

बातचीत करते हैं, जलवायु पर बातचीत करते हैं, आजीविका पर बातचीत करते हैं। लेकिन साथियों, आज हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि हमारे श्रोता साथी, चूंकि हमारे साथी खेती किसानी करते हैं, खेती किसानी में चूंकि अगर पर्यावरण को जोड़ा जाए तो एक अलग पहलू हो जाता है। यदि खेती किसानी में हम दूसरी अन्य चीजों को जोड़ा जाए, जैसे आजीविका को जोड़ा जाए, तो वो अलग बिंदु हो जाता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में, चूंकि हमने पहले सुकल कार्यक्रम जब स्टार्ट किया था, शुरुआत इसकी की थी, तब हमने एक कैंपेन किया था कौन बनेगा शुभ कल लीडर, तो उसमें हमने जो पांच गतिविधियां इस कार्यक्रम के माध्यम से ली थी वो थी किचन गार्डन, अमृत मिट्टी बनाना, केचुआ खाद बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एग्रोफॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी। तो ये सारे विषय जो पांच विषय थे, उस विषय पर हम पुनः जाना चाहेंगे, क्योंकि अब वो समय है कि हम अपने श्रोता साथियों को वो जानकारी उपलब्ध कराएं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में साथियों, आज हम बात करेंगे अमृत मिट्टी बनाने की। अमृत मिट्टी बनाने पर हमारे बैरू भौजी का जो किरदार है, जो आपको बहुत लुहावना लगता था, बहुत बेशक पसंद था हमारे श्रोता साथियों को, तो आज उनका कैरेक्टर भी हम इस कार्यक्रम में लेकर आएंगे। साथ में हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं इससे जुड़े, उनसे हम अमृत मिट्टी बनाने सीखेंगे, जानेंगे, क्योंकि बहुत ही सरल है अमृत मिट्टी बनाना। और लेकिन इस जलवायु को देखते हुए, इस खेती को देखते हुए अगर हम बात करते हैं जैविक खेती की, तो उस जैविक खेती में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अमृत मिट्टी, क्योंकि नया है ये खाद बनाना। हमने मटका खाद सुना होगा, केंचुआ खाद सुना होगा, गोबर की खाद सुना होगा, तो इसका कॉम्बिनेशन जिसे कहा जाता है कि हम एक जगह ऐसी जो फालतू चीजें जैसे पत्ता का इस्तेमाल हम करते हैं, फेंक देते हैं उसको, या तो जला देते हैं, गौमूत्र इसमें लगता है, गोबर लगता है इसमें, तो तमाम प्रकार की जो चीजें हैं उस अमृत मिट्टी बनाने में लगती है। तो आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में साथियों, अमृत मिट्टी बनाना आपको बताएंगे, बैरोजी का करेक्टर आपको सुनवाएंगे, लेकिन साथियों बातचीत हमारी काफी हो चुकी है, एक गीत के साथ आपको मनोरंजन कराते हैं। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से लोकगीत।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम सुपकल में। और साथियों, अभी आपने नारायण दास दर्द और उनके साथियों की आवाज में इस प्यारे से लोकगीत को सुना, पर्यावरण से जुड़ा लोकगीत है। आप कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बैरू भौजी का किरदार जो हमारी निभाती हैं, उनसे हम अमृत मिट्टी बनाना, चूंकि उनने भी बताया है, तो आइए इस नाटकीय रूप को हम सुनते हैं।
1: अरे लालाजू, आज तो बगल में रेडियो रखे और जो, लेकिन क्या कर रहे हो तुम?
2: अरे भौजी, कर तो तुम रही, तुम बताओ क्या कर रही? आज तो बड़ी गजब ढा रही तुम तो।
1: अरे लालाजू, का जा रहे थे ना, मैंने की बजा रहे हुए हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे?
2: अरे भौजी मोई ना सुनो, अब वो कितने यहाँ के आधी अधूरी जानकारी ले लो, तो कितम के नियत ना घर के ना घाट के।
1: का कह रहे लालाजू, आधी माधी कर लेते सो वही कर रहे, का कर रहे?
2: अरे भौजी ध्यान से सुन, जा कह रहा है कि अगर अपन को आधी जानकारी हो गई कछु भी चीज की, कछु भी काम की, तो ना घर के रहे ना घाट के रहे।
1: सो बास का कह रहे लालाजू, घर को पता, घर को ना घाट को?
2: अरे बा काना दूसरी, हम जा दूसरी कह रहे कि अब जो जो जो काम कर रहा है, जो हम वो बना रहे, जो हमने एक दिन सुनी थी का अमृत मिट्टी।
1: अमृत मिट्टी के बारे में सुनो तो।
2: हाँ, तो अब हमने बात सुनी तो है नहीं, अब लेकिन ध्यान से नहीं सुन पाई, सो अब लगे हैंगे जी सब बनावे हम।
1: तुमने ध्यान से काहे नहीं सुनी भाई, पूरी काहे नहीं सुनी लालाजू?
2: अब बस भौजी, तनक एक संग दूसरा काम कर जा रहे थे, एक जने हमें बता रहे थे, भी बड़ी बता तो इन्होनी तरह से रहे थे, लेकिन हमने ध्यान से नहीं सुन पाई, हमारी गलती हो गई अब।
1: अरे लालाजू, मैं जानत होंगी तुम्हें, तुम्हारा मन कितना लगो हो जी, अब तुम्हें काहे को मत सुनाई दे है ढंग से, अब तुम सुन रहे थे तो उन्हें बज सुन लेते होते, उनमें मन ना लगाते।
2: अरे भौजी तुम केवे को मतलब का है, कुन में उतर के तुम मोड़िया ने देख रहे हो तो?
1: मैं तो जही कह रही, तुम जो ही कर रहे हो और बामे ध्यान कम दे रहे हो, अगर कोनो जानकारी सुनना है तो उन्हें ढंग से सुन लो।
2: अब भौजी नहीं सुन भाई अब, लेकिन मैंने कही चलो जैसी सुनी तो बनाई ली।
1: हाओ ये राम भाई, तुम्हें तो खूब बात है वो, अब बना लो।
2: अब भाई तो कर रहे हैं भौजी, सो अब तेवर बीच में आ गई।
1: अच्छा तो अभी तक का करो तुमने?
2: अब जी सब सब सामान तो सट्टा बटोर लो, खट्टो तो कर ही लो।
1: लालाजू मोई तो तुम्हें देख के हंसी आ रही।
2: अब का भौजी, जब काम करे तो भड़ना जी, ऐसे तुम्हें कौन सी हंसी आ रही?
1: ऐसे काम को भड़ गए जैसे मन जाने का पूरी अमृत मिट्टी तुम्हारी बना रहे हूँ।
2: अरे भौजी, जब अपन पूरी तरह से, जब पूरी तरह मट्टी में मिल के काम करें तो अच्छी तरह से बने। हमने सुना कि कोनो चीज में अच्छी तरह से घुल मिल के काम करो तो अच्छा हो जाए।
1: का कह रहे लालाजू, दूध में मिला मिला के पियो सो अच्छा हो जाए?
2: हाँ, कोनो काम अगर अपन अच्छा घुल मिल के करें भाई मिलोच से, तो हमने की इतना भिड़ जाओ तो कौन सी दिक्कत है?
1: अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कह रहे है की मैं भिड़ जाओ तो मंजिने में और मुँह पोत दू मैं तुम, तो और अच्छे लगो सुगाटा जैसी।
2: तो फिर भौजी दिखाए कैसे सुगाटा से तुम्हें बन जे?
1: का कह रहे लालाजू, चाटा घल जे, मैं देखा तुम्हें ये देखो गयी तुम्हारी हमें।
2: अरे भौजी तेन तो कह रही की सुगाटा से बन जे, तो मैंने कही सुगाटा से बन जे से, तो दिखाए कैसे चाटा को मार रहा तुम्हें?
1: अच्छा तो मैंने देख तेज भूल करी तुम तो, वही की वही घुसरू घुसरू कर ली।
2: अब तो सुना तो है इतनी तेज, कहते हैं मैं कौन बिहारी हूँ?
1: कहा कह रहे लालाजू?
2: कछु नहीं जय की रहे, ऐसे कह रहे थे कि बता दो करूँ काम, है समझ में नहीं आ रही।
1: अरे लालाजू तुम चलो मैं ही बता देती हूँ, मुझे तो मालूम है, मैंने खुद सुनो तो।
2: अब लेकिन तू भौजी जाने तो सज के तो ठाड़ी है।
1: कहा कह रहे लालाजू, तू जाने है?
2: हाँ तो ठाड़ी सजी,
1: तो अब सजी ठाड़ी, लेकिन अब मैं तुम्हें बताए दे रही होंगी पहले, अब तुम अब लगे तो होंगे काम कर भी, तो मैंने की अब तुम्हें बताए देता हूँ।
2: अरे मैं सब जाना आई जी मुई ने सज बज के बातें मारे झूठी झूठी।
1: कहा कह रहे लालाजू, झूठी कह रही?
2: अरे भाजी कछु नहीं, अब बता देते हैं तो।
1: हाँ तो मैं बता ही देता हूँ, अब मुझे जाने होते, अब मैं टेम हो रहा हूँ। तो देखो अमृत मिट्टी तुम देखो जो बना तो लही है, लेकिन की के लाने तीन चीजें, जैसे एक तो अपन अमृत मिट्टी जो बना रहे, लेकिन ई के पहले अपन को अमृत जल बनाने पर रखे।
2: अच्छा अमृत जल बनाने?
1: हाँ, यानी कि अमृत पानी बनाने। वो कैसे बना थे?
2: हाँ,
1: वो जो गज्ञा को गोबर हो तो बाय ले लो,
3: ठीक है,
1: और का ले लो गोबर ले लो है, और एक सड़ो गड़ो फल हो तो अपनो, चाहे केला हो चाहे वो अपन

0: मतलब नहीं खा रहा है सीधी बात।
1: अच्छा
0: है वो ले लो सुबह एक डिब्बा में घोल के और रख दो कह देना खिलाने तीन दिन खिलाने ठीक है लालाजू आ रही समझ में।
1: बिल्कुल बिल्कुल नोनी तरह से यहाँ जा रही।
0: कहा कह रहा लालाजू ने कम तरीका से आ रही।
1: अरे बात पूरी तरीका से आ रही।
0: भाई तो मैं कह रही सुबह एक डिब्बा में अपन रख दे तीन दिन खिलाने लेकिन अपनी जो अपन ऐसे महरी टारत एक चमचा कहू ऐसो घुमा दे कहूँ ऐसो घुमा दे उल्टो सीधो मतलब तो बस चमचा को ऐसे घुमाने
1: कबो जी कबो हरिया को नीचे करने के ऊपर करने।
0: अरे लालाजू बस चमचा से अपन महरी बस जब अपन बेसन बस जारत के भाव में गुठलाना पड़ जाए सुबह चमचा को ऐसो घुमा और फिर ऐसो घुमा।
1: अच्छा ईलंग और उलंग
0: खाओ सुबह एक ही मिल जाए तीन दिन में फिर उके बाद लालाजू हो तुम्हें जो करने के परते बनाने वो बन गो अपनो जल जल बन गो अब अमृत वो बनाने अपन को अमृत मिट्टी उके लाने तुम्हें जो करने पड़े कि एक खेत में जितने तुम्हें बनाने उतने में तुम पहले मट्टी बिछाओ जैसी इतनी परत में मतलब मट्टी बिछा लो पट्टिया मान लो फिर बनाने तो अपन पट्टिया जितनी मट्टी बिछा ले उके ऊपर गोबर बिछा दे फिर उके ऊपर पानी लगा अमृत पानी लगातार किन छत जाने ठीक है लालाजी।
1: अच्छा
0: आओ और फिर उके ऊपर अपन फिर से मट्टी बिछा दे
1: फिर से मट्टी बिछाए
0: आओ मट्टी बिछावे के बाद फिर अगर कूड़ा कचरा है अपनी गली में भैसन को तो उके ऊपर बिछा दो बाकी आ रही
1: हाँ आ रही है
0: फिर उके ऊपर फिर मट्टी बिछा दू है और फिर जो अपन ने बीज लेने पर 10 प्रकार के
1: बीज लेने
0: आओ चाहे गेहूँ बाजरा मटर सब ले लो और उमे भी बे दू और पानी लगातार किन छत जाओ ठीक है फिर लगातार 10 दिन बाद अपनी जो गेहूँ उगे आए भी वो लालाजू ये और करने वो जो अपन ने बीज बोए बाकी ऊपर अपन को वो बिछाने का
2: पत्ता मत्ता
0: डालने ठीक है डालने के बाद उमे अपन को लालाजू तुम तो सुन नहीं रहे मेरी बात
1: मुड़ी तो मटका जा रहा हूँ मैं इतनी
0: मुड़ी से नहीं मैं तो हूँ का दियो।
1: अच्छा हूँ का देने आए अब मैं तो सब देखा जा रहा हूँ और करत भी जा रहा हूँ
0: तो ठीक है सो उके बाद तुम वो अपनी जो हो जाए मैं पेड़े बच्ची सी मतलब उगी आए नहीं अपने सुबह काट के आधी वही में मिला दू गाय में वही में जो अपन ने लगाई है।
1: अच्छा
0: हाँ फिर 10 दिन बाद हो जाए सो फिर से मिला दू और जब 100 दिन बाद फिर से हो जाए सुबह पूरी छोटी छोटी करके काट लो और उको फिर से वही में मिला दू
1: तो फिर बन गई मट्टी
0: फिर उको वहाँ फिर उको फरुआ लेके मिक्स कर लो।
1: अच्छा
0: हाओ मिक्स करने के बाद फिर जितने अपन गेहूं कछु लगा रहे वह फेंकर जाओ किन छत जाओ वह डाल दो तो वो एक अपनो रासायनिक खाद को उपयोग करे जो आपको तत्व मतलब बाह में मिल रहा है जैसे साथी इनकी कहावत रह क्या बाह में रासायनिक बाह में खाद में ज्यादा वो मिल जाते हैं तो इनमें भी उतना ही तत्व मिल रहे और 2-3 चीजें और फायदा भी है इनमें
1: तो अब तो बिल्कुल मैंने ध्यान से सुनने की बात है अब तो मैं बिल्कुल बना ही ले हूं।
0: हाँ तो इनमें 2-3 चीजें जो फायदा की है एक तो इसे अपनो स्वास्थ्य सही रहे को है लालाजू और दूसरो अपनो पर्यावरण अच्छो रहे को लालाजू हो देखो मैंने अगर टोको तो और तुम तो नोरा जैसी मुड़ी नहीं मटका उसके मुड़ी लगे मटका भी मेो कछु में तो अपनो मोह है जो मियो तुम मोह प्राला वो बतात बतात।
1: अरे भाजी तो करने मुँह तो पूरी समझ में आ गई कैसे बनाई जाती
0: है। हाँ तुम तो वही ले आज 2000 की बोरी आ रही रासायनिक खाद की वही ले आज काय को जो बना हो तुम्हें तो तुम होंगे पक्की अब तुम तो नाव कर रहे थे सुन के तुम होंगे पक्के आलसी।
1: अरे भाजी अब तो बिल्कुल पूरी ध्यान में आ गई कि कैसे बनाने जरूर बना ले अब तो
0: मैं। हाँ तो लालाजू मैं चली
1: बिल्कुल अब तो भाजी जरूर मिट्टी बनाऊं और जरूर अपने पर्यावरण को बचाऊं।
3: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में और साथियों अभी आपने बैरू भौजी को नाट के रूप में सुना और इनसे अमृत मिट्टी बनाना कुछ तो हमारे बैरू भौजी ने बता ही दिया है। अब हम आपको एक्सपर्ट के पास ले चलते हैं और उनकी सलाह हम लेते हैं अमृत मिट्टी बनाने के लिए तो आइए उनसे बातचीत करने से पहले हम एक और आपको लोकगीत सुनवा देते हैं क्योंकि मनोरंजन भी होता रहेगा और कार्यक्रम सुनवाते रहेंगे तो आनंद ही कुछ अलग आएगा तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से लोकगीत को रमेश और उनके साथियों की आवाज में
4: आप

0: अभी आपने इस प्यारे से लोकगीत को सुना और लोकगीत का आनंद लिया। आइए अब आपको आलोक जी के पास ले चलते हैं, अमृत मिट्टी बनाना वो बता रहे हैं, तो जानकारी ध्यान से सुनिएगा, बाद में हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, तो तैयार रहिएगा। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से चर्चा को।
1: जैसा कि है अमृत मिट्टी, अमृत मतलब कि जो भी जीवनदायी चीज होता है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिट्टी को एक जीवन, अलग तरह का जीवन दिया जाता है, जिसमें उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अमृत मिट्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां से आया कि अगर मान लीजिए अब मानव नहीं रहता है, जब जंगल रहते हैं तो जंगल के पौधे बिना बारिश और बिना अतिरिक्त खाद के कैसे हरियाली रहते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर अमृत मिट्टी को हम लोगों ने बनाने का कोशिश किया है। अमृत मिट्टी अगर हम बात करें तो अमृत मिट्टी के लिए बहुत सारे अलग बहुत तरीके नहीं है और बाहरी तत्व की इसमें कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आप जान सकते हैं केचुआ खाद के लिए केचुआ लाना पड़ेगा या दूसरी चीजें बुलाना पड़ेगा, लेकिन अमृत मिट्टी एक ऐसा है कि आपका अगर गांव में जो भी चीज संसाधन है, जैसे गाय है या आपकी खेती का से निकलने वाला जो भी खरपतवार है, तो इसी से तैयार होता है। देखिए ये तो अमृत मिट्टी को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और इसको भूमि की उर्वरा शक्ति जो बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आपके पास जैसा भी संसाधन है इसके हिसाब से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष जगह तैयार करने की जरूरत नहीं होती है, आपके पास जो भी भूमि उपलब्ध हो और जिस भूमि में आप दूसरा उपयोग नहीं करना चाह रहे हो या नहीं करते हो तो उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं। ये इस अमृत मिट्टी को बनाने में करीब करीब 90 से 100 दिन लगते हैं, लेकिन इसकी उर्वरा शक्ति इतनी तेज और इसकी जो जल धारण शक्ति काफी अधिक बढ़ जाती है, तो कम पानी में भी आपकी खेती बहुत अच्छी होती है। अमृत मिट्टी बनाने के लिए जो सामानों की जरूरत होती है या जो भी संसाधन की जरूरत होती है वो आपके आसपास या आपके खेत खलियान से ही निकल के आता है। जैसा अगर कह सकते हैं गाय का गोबर, गाय का मूत्र, खेती बाड़ी से जो खरपतवार जो निकल के आता है वो, ये बस ये दो तीन चीजें हैं, और जो भी बीज आप लगाते हैं वो बस यही चीजें हैं जो आप अमृत मिट्टी में आसानी से इसका उपयोग करके अमृत मिट्टी बना सकते हैं।

0: इस अमृत मिट्टी की खासियत यह है कि आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार की मिट्टी का उपचार कर सकते हैं। कोई मिट्टी को आप अमृत मिट्टी में परिवर्तित कर सकते हैं और या अमृत मिट्टी कहीं बना गया किसी भी मिट्टी में डाल सकते हैं। अच्छा। ये तो मैं जैसा आपको बताया कि ये आपके ऊपर सारा निर्भर करता है कि आप छोटे से जगह पर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं या बड़े भाग में आप बनाना चाहते हैं। जैसा मैंने अभी जस्ट बताया कि बुंदेलखंड के बारे में अगर थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, बुंदेलखंड में जनरली आप देखोगे वो काफी सूखा ग्रस्त जगह है और यहाँ पर जलधारण क्षमता बहुत कम है। जलधारण क्षमता कम होने की वजह से क्या होता है कि उनको बार बार पानी की किसी भी फसल में बार बार पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम अमृत मिट्टी के इस प्रोसेस को अगर बुंदेलखंड में लाएं, जैसा मैंने अभी रामपाल भाई को भी बताया और अपने किसान भाइयों को भी बताया कि अमृत मिट्टी एक ऐसा मिट्टी उपचार है या खाद आप कर भी सकते हैं जिसमें गुणवत्ता जो भूमि या मिट्टी की गुणवत्ता उर्वरा शक्ति काफी बढ़ जाती है और जल धारण क्षमता भी बढ़ती है जिससे आपको सिंचाई देर से कम देनी पड़ती है। जैसा अभी मैं बता रहा हूँ कि जो अमृत मिट्टी है वो आपके ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप कितनी भूमि में इसका प्रयोग करना चाहते हैं, आपके पास संसाधन कितने उपलब्ध हैं, आपकी अगर खेती हो रही है या कोई जमीन है वो कितना खाली पड़ा हुआ है जिसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो उस पर सारा चीज निर्भर करता है। अगर आप मान लीजिए खेत का प्रयोग कर रहे हैं खेती के लिए, तो आप ऐसे भाग का प्रयोग करें जहां पर खेती नहीं करते हैं और फिर उस मिट्टी का उपयोग आप खाद के रूप में अपनी भूमि में कर सकते हैं। अच्छा। या अगर आपका खेत खाली है, कोई लगता है कि बंजर है या जहाँ पर हम खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर भी हम इसका प्रयोग करके अमृत मिट्टी बना सकते हैं और उसके बाद फिर उसी खेत में आप दूसरी फसल ले लगा सकते हैं।
1: और
0: क्या, और ये तो और भी अच्छी बात है कि किचन गार्डन क्योंकि घर के नजदीक ही होता है तो एक अमृत मिट्टी का प्रयोग करके अगर हम किचन गार्डन करते हैं तो जो जो भी फसल होगी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब कि उसका जो भी काफी अच्छी हो जाती है और गुणवत्ता भी काफी जो फसल की है वो गुणवत्ता बढ़ जाती है। अच्छा। तो किचन गार्डन में भी इसका उपयोग कर सकते।

रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम शुभकल में पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आलोक प्रभात जी ने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, हमारे वार्ताकार थी हमारी प्राची जी और बहुत अच्छी उन्होंने सलाह दी है कि अगर आपकी खेती में गुणवत्ता लानी है, खेती को अच्छा बनाना है तो अमृत मिट्टी डालकर हम इसको अच्छा बना सकते हैं और उनकी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये अमृत मिट्टी बनाना चूंकि बहुत ही सरल है जो कि उन्होंने बताया है, आप भी अपने घर पे अमृत मिट्टी बनाकर अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। जैसे बार बार हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले आ रहे हैं कि हमें अब रासायनिक दवाएं जो हम खेतों में डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, उन पर हमें रोक लगानी चाहिए, दूसरों को समझाना चाहिए इस बारे में, क्योंकि जो बीमारियां पनप रही है ऐसी रिपोर्ट बता रही है कि अधिकतर बीमारी जो रासायनिक खाद से उगाई गई सब्जियों से हो रही है। तमाम प्रकार की बीमारी जो अभी तक हमने सुनी भी नहीं थी, इस प्रकार की बीमारी अब हमें सुनने को मिल रही है। तो हमें इन बीमारियों से यदि बचना है तो जैविक पद्धति की ओर फिर से हमें मुड़ना होगा, जैविक पद्धति से हमें अपनी खेती को करना होगा। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है कि जैविक खेती हमारे किसान साथी इसको अप करें और अपनी खेती में बदलाव कर अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं और जो हम अपने खेती के साथ, जो धरती के साथ, जो मिट्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उससे भी हम बच सकते हैं। साथियों हमें आशा है कि इस कार्यक्रम को सुनकर हमारे श्रोता साथियों के मन में बहुत सारे ढेर सारे ऐसे सवाल होंगे जो हमसे पूछना चाहते होंगे और साथ साथ में बताना भी चाहते हैं, तो आप हमें यदि फोन करके बता सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9219207749। श्रोताओं आप हमें चिट्ठी के माध्यम से भी बता सकते हैं, जो पुराने हम चिट्ठी हमारे श्रोता भेजते थे हमें बहुत अच्छा लगता था, हम कार्यक्रम में उसको पढ़ते थे, जोड़ते थे, जो सुझाव रहते थे उस पर

0: हम अमल करते थे, तब एक नया कार्यक्रम हम बनाते थे। बहुत खुशी रहती थी कि हमारे श्रोता साथियों का इतने ज्यादा स्नेह रहता है, प्यार रहता है। जैसे कि हम अभी पठा में गए थे और हमारे जो विजय जी हैं काफी नियमित श्रोता हैं, और उनसे मिलकर हमें काफी अच्छा लगता है कि ऐसे हमारे नियमित श्रोता जो हमारे हर कार्यक्रम को सुनकर अपने बहुमूल्य समय निकालकर फीडबैक जरूर देते हैं, सुझाव देते हैं, चाहे वो बातें हमारी तुम्हारी कार्यक्रम हो, आज की बात हो, किसी भी कार्यक्रम के बारे में यदि उनसे जानना चाहे तो जान सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम उनको ऐसे हमारे श्रोता साथी जैसे वीकेश जी भी हैं, ऐसे हमारे श्रोता साथियों को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम में जुड़कर फीडबैक हमें देते हैं और उस फीडबैक के माध्यम पर हम कार्यक्रम बनाते हैं। हम चाहेंगे कि अब हमारे जो अगले कार्यक्रम बनेंगे उसमें आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि इस विषय पर हमें कार्यक्रम सुबह कल में सुनना है, तो हम आपको रिकॉर्डिंग करेंगे और इस कार्यक्रम को बनाकर आप लोगों तक प्रस्तुत करेंगे। अब साथियों, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम सुबह कल से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात।
1: बदलती जलवायु के लिए तैयार हम। शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
0: किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि कोई चलता पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है और पदचिन्ह बनाने वाला ही इस जग में पूजा जाता है। सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो साथी मनीष
2: और आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और साथियों, हम होंगे कामयाब में हम बात करेंगे आज सफल कहानी को लेकर नंदिनी दीक्षित जी से। जी हाँ श्रोताओं, तो अब देर नहीं करते हैं क्योंकि ऐसी ही एक कहानी हमारे बीच में आज फिर से मौजूद है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत अच्छा कार्य किया है। तो हम देर नहीं करते हैं, आप सभी को ले चलते हैं नंदिनी दीक्षित जी के पास।
0: और नंदिनी दीक्षित जी से हम जानते हैं कि किस तरीके से वो कामयाब होती चली गई और आज इस मुकाम तक पहुंच गई हैं। आज उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे लोगों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। तो आइए आपको सीधा ले चलते हैं नंदिनी दीक्षित जी के पास, उनकी कहानी को हम जानते हैं कि किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण को लेकर उन्होंने कार्य किया है। तो आइए सुनते हैं नंदिनी जी को, जिनसे बात कर रहे हैं शशांक दुबे जी, एजुकेशन ऑफिसर हैं। तो आइए इनकी वार्ता को हम सुनते हैं।
2: साथियों, नंदिनी दीक्षित जी से हम आगे बातचीत जरूर करेंगे, उनकी कहानी को सुनेंगे कि किस तरह से उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम किया हुआ है अपने क्षेत्र में और काफी काम वो अभी भी कर रही हैं। जहां पर वो पढ़ाई कर रही हैं वहां पर भी वो पर्यावरण को लेकर कार्य कर रही हैं लगातार। तो उनसे हम बातचीत आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर हम एक छोटा सा लोकगीत सुन लेते हैं पर्यावरण से जुड़ा हुआ, उसके बाद लौट के आते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में।
3: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन।

0: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में अबे अपन ने सुनो ये प्यारे से लोकगीत को जीखो गा रहे थे बालिक दास कुशवाहा और उनके साथी। और अब हम देर नहीं कर रहेंगे, आपको ले चला थेंगे सीधे नंदिनी दीक्षित जी के पास, जिसे बातचीत कर रहेंगे शशांक जी, और उनसे जानेंगे कि कैसे वे प्रेरित भई थी, कौन तरह से उनने पर्यावरण को समझो और फिर उनके बाद वे काम करने लगी पर्यावरण को लेके। तो आओ उन्हीं से सुना थेंगे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी।
0: नंदिनी जी
2: नमस्ते।
0: नंदिनी जी, हमारे साथ जो आज लिसनर्स जुड़े हुए हैं इस रेडियो चैनल के माध्यम से, क्या आप उनको अपना नाम और उस जगह के बारे में कुछ बातें बता सकते हैं जहां आप बड़े हुए हैं?
2: तो देखिए, मेरा नाम है नंदिनी दीक्षित और मैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बचेली नगर की निवासी हूँ। और मैं बेसिकली अभी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में बीटेक की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। और मैं बेसिकली तो मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, कानपुर से हूँ मैं, बट हम यहाँ शिफ्ट कर रहे थे दंतेवाड़ा बचेली में, एंड बचेली इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, तो नेचर से काफी कनेक्टेड है वो जगह।
0: शुक्रिया नंदिनी जी। नंदिनी जी, आपने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो कार्य करे हैं उसकी शुरुआत किस जगह से करी थी और क्या क्या कार्य आपने संरक्षण के प्रति करे हैं?
2: एक्चुअली मेरे डैड पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे थे, तो वो एक उन्होंने 26 जुलाई 2019 को एक वन वर्ल्ड की शुरुआत की थी। उस वन का नाम अमोद अरण्य है और इसको हमने कारगिल दिवस पर कारगिल योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के रूप में की थी। हम बैरन लैंड पे प्लांट्स लगा रहे थे और उन्हीं से मैं इंस्पायर्ड होकर मैं खुद एक कैंपेन चलाती हूँ, एक पेड़ शहीदों के नाम, जिसके तहत मैं हर महीने की 19 से 25 तारीख को शहीदों के नाम पे पौधारोपण करती हूँ। तो इसी के साथ हम स्टूडेंट्स के लिए भी कैंपेन चलाते हैं। हम स्टूडेंट्स को बेसिकली हम नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो यूथ है और यूथ हमारे फ्यूचर जनरेशन को किस तरीके से अच्छे से, हमारे फ्यूचर जनरेशन है वो, तो वो अच्छे से पर्यावरण को समझे और उसके लिए कार्य करें, तो उनके लिए हम कैंपेन्स चलाते हैं। हम डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाते हैं और इसी के साथ हम जैसे प्लास्टिक के लिए भी कैंपेन चलाते हैं, इको ब्रिक्स बनाने। और यहाँ पे जैसे बचेली में हमारे कैंपेन से काफी घर ऐसे हैं जो अपना घर का प्लास्टिक घर में ही रखते हैं, तो बेसिकली अपने फादर से मैंने इंस्पायर होके ये चीजों की शुरुआत की थी, एंड होपफुली ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम और आगे भी करते रहेंगे।
0: तो जो आप युवाओं के लिए उनको प्रेरित करते हैं कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण की हर चीज को बारीकी से समझें, इसमें आपने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया है?
2: तो सबसे बड़ी चुनौती जो मैंने फेस की है वो, क्योंकि मैं एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ, तो मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव है, दे ऑलवेज सपोर्ट मी, जो मुझे करना है वो, मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं, वो हमेशा मुझे प्रेरित करती कि नहीं आपको ये करना आप कीजिए, बट लोगों से वो रिस्पॉन्स नहीं आता था। पीपल वे लाइक कि आप मतलब एक आपकी बेटी, आप ऐसा इस लाइन में क्यों डाल रहे हैं, इस लाइन में क्यों डाल रहे हैं, तो ये चीज तो थी। साथ में रिस्पॉन्स बहुत कम आता था, लोग उतना मतलब लाइक इतना इस चीजों पर्यावरण और ये सब चीजें इतनी सीरियसली लेते नहीं थे। तो अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं पूरा ओवरकम कर गई हूँ इन सब चीजों से, बट काफी हद तक हमने लोगों को प्रेरित किया है और उनको पर्यावरण से जोड़ने की कोशिश की है।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी जी। सो आज जो हमारे साथ लिसनर्स जो जुड़े हुए हैं इस रेडियो चैनल के माध्यम से, जो युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, के अनुसार उनके लिए ऐसा क्या मैसेज है जो उनको ध्यान से सुनना चाहिए और भविष्य में वो कार्य करने चाहिए, ऐसे कौन से कार्य आप उनको बता सकते हैं?
2: जी, तो देखिए, मेरा पर्सनली ये मानना है कि छोटे छोटे स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं, जैसे बूंद बूंद से घड़ा बन से भरता है, तो ऐसे छोटे स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं और इंडिविजुअल एक्शंस तो बहुत जरूरी है। हमें खुद से समाज तक जाना है और खुद को पहले खुद को बदलना है, खुद को एक एग्जाम्पल सेट करना है समाज के सामने। तो आप किसी भी सिचुएशन में, आप कहीं भी हो, आप पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे कार्य भी करते तो वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं बाहर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में, मैं अपने पीजी में हूँ, बट स्टिल मैं इको ब्रिक्स यहाँ पे भी मैं बनाती हूँ। तो लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कहीं भी हो, पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे कार्य करिए। आप जैसे इको ब्रिक्स मैं बनाते हैं, आप इको ब्रिक्स बना सकते हैं, और फिर लाइक बहुत सारी चीजें हम जैसे हमें प्लांट्स पे ज्यादा डिपेंड रहना चाहिए। मेरा ऐसा पर्सनली मानना, प्लांट्स पे डिपेंड रहिए, आप अपना थैला खुद लेके जाइए बाहर, ऐसे बहुत सारी चीजें लाइक लाइट ऑफ लाइट ऑन, ये हमको बचपन से सिखाया जाता है, तो ये सब कुछ चीजें हैं, आप यहाँ से शुरुआत करिए और फिर आगे तो फिर बढ़ेगा ही। तो मेरा सबसे यही है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और घर से अपने शुरुआत कीजिए, एक पेड़ लगाइए अपने घर पे और उसके अच्छे से केयर कीजिए, तो आप उससे कनेक्ट होंगे। तो जब आप नेचर से कनेक्ट होंगे तो आप खुद आइडियाज निकालेंगे कि और ऐसा क्या कर सकते हैं मदर नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो पर्यावरण को हार्म कर रही होती है पर हमें उनके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, तो हमें उन चीजों के बारे में रिसर्च करना है, हमें पढ़ना और सजग रहना है और सभी चीजों के प्रति हमें संवेदनशील रहना है। हमें हमें पेड़ में हमें जान महसूस करनी है, हमें संवेदनशील इतना होना है कि हम सब चीज में जान महसूस करें। तो ऐसा छोटे छोटे ऐसी चीजें हमें करते रहनी चाहिए।
0: शुक्रिया नंदिनी जी। आपके अनुसार पर्यावरण से रिलेटेड शिक्षा, पर्यावरण से की जो जागरूकता है हमारे अंदर, वो कैसे और अच्छे तरीके से छोटे बच्चों में और युवाओं में जनरेट करी जा सकती है?
2: आई थिंक ये चीजें प्रैक्टिकल के थ्रू ज्यादा की जा सकती है। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं पेड़ लगाऊंगा, हमें ये कि मैं पेड़ लगा चुका हूँ और उसकी मैं केयर कर रहा हूँ, हमें इस जगह शिफ्ट करना है। हमें बच्चों से प्रैक्टिकल कराना है कि बच्चों से एक पौधा लगवाइए, उनको बोलिए आप इस पौधे की केयर कीजिए, क्योंकि लाइक पौधा ऐसा चीज है, प्लांट एंड ट्रीज आर द थिंग्स लाइक वो बहुत ही वैल्यूएबल है। हमें मतलब उनको अच्छे से बच्चों को ये चीज सिखानी है, तो हमें प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि उसी से आई थिंक ज्यादा लोगों के अंदर और जागरूकता आएगी। आप जैसे बच्चे जा रहे हैं फैन ऑन करके चले गए, तो आप उनको सिखाइए नहीं आप फैन बंद कीजिए, सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें रहती है, छोटी छोटी चीजें जो हमें किड्स को स्पेशली सिखानी चाहिए। और बचपन से जैसे हम इन्हें प्रैक्टिकल कराएंगे इस चीजों का, तो आई थिंक उनके अंदर ज्यादा इस चीजों की वैल्यू आएगी। और जब बड़े होंगे वो और पढ़ेंगे इस बारे में आगे क्लासेस में, तो वो चीजें जब बचपन से भी वो कर रहे होंगे तो उनको एक्चुअल मीनिंग तब पता चलेगा कि ओके हमारे पेरेंट्स हमें छोटे से क्यों बोलते थे कि वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हेन दे विल रीड अबाउट इट तो तब वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसलिए हमें बचपन से ही बच्चों को नेचर से कनेक्ट करके रखना चाहिए। लाइक माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज कनेक्टेड मी विद नेचर, वो हमेशा से मुझे बचपन से मुझे सिखाते थे कि नहीं बेटा पानी बचाइए, आप नल बंद कीजिए, हमेशा आप घर से निकल रहे हैं बाहर के लाइट ऑल एवरीथिंग ऑफ करके चलिए, प्लांट है बेटा, वो मुझसे पानी बचपन में डलवाते थे कि नहीं आप प्लांट्स पे पानी डालिए, आप कनेक्ट कीजिए नेचर से। आई थिंक चिल्ड्रंस को प्रैक्टिकल के थ्रू नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और चिल्ड्रंस को ही नहीं सबको प्रैक्टिकल करके नेचर से कनेक्ट होना चाहिए।
0: बहुत ही कीमती जानकारी और बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने हम सबके लिए। इसके अलावा जो मेरा एक और सवाल है आपसे वो ये है कि जो स्कूल्स और जो कॉलेजेस हैं इनका क्या कर्तव्य होना चाहिए पर्यावरण की जागरूकता फैलाने में और इसमें युवाओं को मोटिवेट करने में?
2: जी देखिए, स्कूल एंड कॉलेजेस तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि पूरे यूथ और स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सब एक साथ होते हैं, तो प्रोबेबली वो ऐसी प्लेस है कि जैसे अगर टीचर आपको जो बताता है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उसको ग्रैप करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो सीखते हैं। तो यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स का तो बहुत ही मेजर रोल है, उनको भी लाइक टाइम टू टाइम बच्चों को उनके प्रैक्टिकल्स कराना चाहिए। स्कूल कैंपसेस बड़े होते हैं, वहां पे प्लांट्स लगा के उनको बोलना चाहिए कि आप अपने पौधे का केयर कीजिए, क्योंकि बच्चे डेली स्कूल

0: आता है, वो अपना एक प्लांट लगाएगा, वो उसको डेली वाटर कर सकता है, तो वो डेली का एक प्रैक्टिकल, वो तो बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ बच्चे और अच्छे से सीख सकते हैं। एंड लाइक वो तो इतना कॉम्पिटिशन कराए ताकि लोग और पर्यावरण के बारे में जाने, जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन हम करा सकते हैं स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, अगर प्लेस होते हैं जिसके थ्रू वीडियोज एंड प्लेस के थ्रू भी लोगों को हम पर्यावरण के से कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन्हें प्रोबेबली स्टूडेंट्स से प्रैक्टिकल्स कराना चाहिए और अपने कैंपस को भी इतना अच्छा ग्रीन एंड ऑल रखना चाहिए कि लोगों को देख के इतना सुकून मिले, तो वो चीजें और ज्यादा कनेक्ट करते हैं जब आप देखते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं, तो एज आई सेड तो वो चीजें ज्यादा वर्क करेंगी। तो यूनिवर्सिटी एंड स्कूल को तो कॉम्पिटिशन कराने चाहिए एंड वो खुद इस चीज में सजग रहेंगे तो आगे और अच्छा कर पाएंगे।
1: शुक्रिया नंदिनी जी।
2: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
3: अपना रेडियो अपनी बातें, साथी हरो भैया हरो, अपन अब सुन रहे हते नंदिनी दीक्षित जी को जिनने पर्यावरण को लेके बहुत अच्छो काम करो है गो। अब हमारे साथी जो है तनक सोच में भी हुए के पर्यावरण से जुड़ी हुई बातचीत तो अपन शुभ कल कार्यक्रम में करत रहेंगे, लेकिन आज हम होंगे कामयाब में भी शुभ कल। तो भैया ऐसा नहीं है, देखो शुभ कल को हमने कही थी कि अपन को ध्यान रखने है गो और हर एक चीज में अपन को शुभ कल देखने है गो। सो नंदिनी दीक्षित जी जो हैंगी वे एक सफल महिला हैंगी, यानी कि उनने जो काम की वो नींव रखी हती उनमें भी सफल भई हैंगी, यानी पर्यावरण से जुड़ो जो कार्य भी कर रही हती उनमें भी सफल भई हैंगी। यही से अपन को लगो के हम होंगे कामयाब में। आज के दिन अपन जो सफल कहानी लेके आतेंगे तो कायना वा पर्यावरण से जुड़ी हुई कहानी आप सबको सुनावे।
4: वर्षा हमें भी लगा थे गो कि नंदिनी दीक्षित जैसी ऐसी हमारी जो सफल महिलाएं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लाने बहुत ही इन्होंने काम करो है गो, और हमें एक बात और कहने वाले हैंगे कि पर्यावरण के लाने तुमने भी बहुत अच्छा काम करो, तो हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देवो चाहते हैंगे और अपने कुछ अनुभव पर्यावरण से जुड़े जरूर साझा करो। कैसे हम वो और आप सफल कहानी के माध्यम से तो जानते ही हैंगे। वर्षा के बारे में सब लोग ने जानत हैंगे कि वर्षा रेडियो बुंदेलखंड में काम करत हैंगे, लेकिन पर्यावरण के लाने विशेष तौर पर अब एक महीना में इन्हों पुरस्कृत करो गो तो, और विशेष तौर पर इन्हों बुलाओ गो तो कि आप बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपने जो सोगहन में मिलके पर्यावरण के लाने जो मुहिम छेड़ी हैगी और पर्यावरण के लाने तरह तरह के कार्यक्रम बनाए हैं, खास तौर पर रेडियो से बनाए जो कार्यक्रम और नैरोकास्टिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करो, तो कछु अपने श्रोता साथियों को पर्यावरण बचावे के लाने कछु संदेश, पर्यावरण संरक्षित के लाने का संदेश आप भी दो।
3: सबसे पहले तो मनीष भैया हम आपको बता देवे कि जो काम की जो तारीफ आप पुल बांधवे जा रहे हैंगे वो काम को वर्षा ने अकेले नहीं करो है गो, हमारी पूरी टीम जैसे कि मनीष भैया हैंगे, माता दीन भैया हैंगे, अपने जगरूप भैया भी हते, उनने भी प्राची रामपाल अबे तक के जितने भी रेडियो के साथी काम करत हते सबने मिलके काम करो है गो। सो ये तारीफ के हकदार अपनो पूरो रेडियो बुंदेलखंड को स्टाफ है गो। सो अनुभव के लाने अगर मनीष भैया आपने बात छेड़ी हैगी तो आपको बता देवे कि शुभकल कार्यक्रम अपन और 2013 से लगातार अपने साथियों के बीच में चला रहेंगे और समय के अनुसार जो समय की मांग होते ही उन सब चीजन को अपने साथियों के बीच में अपन प्रसारण करेंगे। जैसे अगर हमारे कोनो किसान साथी पूछत हेंगे अपन से कि अगर पर्यावरण को सही रखने है को तो उके लाने अपन और कौन सी बीजन को चयन करवे, कौन सी खाद को उपयोग करवे, तो बस इन्हीं के बारे में अपन और ने जागरूकता बढ़ाई हैगी। काम करवे की तो अपन बात नहीं कह सकत, लेकिन अपन ने जागरूकता बढ़ाई हैगी इन गांवन में, सो जी की वजह से लोग समझ गए हैंगे और आप खुद से काम करवो उनने शुरू कर दो है गो, तो सफलता जो मिली हैगी वह रेडियो बुंदेलखंड को मिली हैगी।
4: बिल्कुल, और संगे संगे आप भी उसके पात्र हकदार होगी। कैसे यूएन क्लाइमेट चेंज यंग लीडर में आपको सिलेक्शन भी हुआ, तो और आपको बता दें वो चाहे जाके बाद सिलसिला रुको नहीं है और एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करके आज हम और आप देख रहे हैं कि पूरे पेपरों में क्लाइमेट चेंज को लेकर अपने बुंदेलखंड क्षेत्र से श्री वर्षा का चयन किया गया था, और बड़े गौरवान्वित की बात है कि इस तरीके की कुछ उपलब्धियां रेडियो बुंदेलखंड को प्राप्त भई हैंगी, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करत हेंगे आप लोगों को स्नेह जो मिले है गो, और खास तौर पर रेडियो बुंदेलखंड की इतनी चर्चा खास तौर पर पूरी देश में सुनाई जा रही हैगी कि रेडियो बुंदेलखंड द्वारा कितनो अच्छो काम करो जा रहा है गो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर

0: साथियों, आपको वर्षा की पूरी कहानी आपको सुनने हैगी तो आप फोन कर सकते हैंगे। और अगर सबसे ज्यादा जन के मतलब फोन आ गए हैंगे कि वर्षा की पूरी कहानी अभी तक को सफर आपको सुनने हैं तो कॉल कर सकते हैं, नंबर वही है वो हमारा 92-19-20-77-49।
1: बहुत बढ़िया मनीष भज्जा, आपने तो एने ही नोनी बात बता दी हैगी और वर्षा की कहानी इतने अपन सफल कहानी सुन रहे थे और सफल कहानी में अपन ने आज वर्षा की कहानी पे ज्यादा फोकस कर लो है को। सो इन सब चीजन पे आपको ध्यान नहीं देना है, बस केवल मनीष भैया को उद्देश्य जो है तो वो जो है तो के रेडियो बुंदेलखंड को एक सफलता आज मिल गई है कि बड़ा अच्छो लग रहा है और इन सबको श्रेय जो है वो अपनी टीम को तो जाता ही है लेकिन संग में अपने श्रोता साथी इनको भी जाते हैं। क्योंकि जो भी चीजें अपन इतने ब्रॉडकास्ट कर रहे थे अगर अपने साथी भैया सुन के उनमें बदलाव नहीं करेंगे तो अपन उन्हें सफल नहीं हो पाएंगे। तो हम साथियों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि भैया आगे भी आपको साथ हमारे संगे ऐसे ही बनो रहे ताकि रेडियो बुंदेलखंड हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचत रहे। और देखो आप ज्यादा बतकाव नहीं करने है गो काहे कि अपनो समय कार्यक्रम को इतना ही समाप्त हो जा रहा है गो। सो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
0: और मनीष को दो जावे की इजाजत,
1: फिर उज्जे आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।
2: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन।

0: हेलो सहेली। हेलो सहेली, नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाली सभी सखियों को हम यानी कि वर्षा दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और साथ में हमारी सखियों को बता देना चाहते हैं कि हम उनका पसंदीदा जो कार्यक्रम है हेलो सहेली वो लेकर आ गए हैं। और आप इस समय अपने अपने आसपास की जो भी बहनें हैं उनको भी बिठा लीजिए ताकि उनको भी पता चले कि आपकी आवाज जो है वो रेडियो पर आ रही है और रेडियो पर आवाज अगर आ रही है आपकी पसंद का गीत भी आएगा। तो बिल्कुल सखियों, आपको बता देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में अगर आप शामिल होना चाहती हैं और अपने मनपसंद लोकगीत की फरमाइश करना चाहती हैं तो हमें शुक्रवार के दिन कॉल करें हमारे नंबर 94-25-14-17-26 पर, और कॉल करने के बाद आप अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकती हैं जिसको आप शनिवार को सुन सकती हैं। तो आइए, हमारे साथ कुछ सखियां हैं जिन्होंने अपनी फरमाइश करी है और सुनते हैं उनकी मनपसंद फरमाइश को। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, को बोल रही?
1: पार्वती वंश का सजनपुरा से।
0: बिल्कुल पार्वती जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। बताओ का क्या बचाती हो?
1: हम देखते हैं दीदी का, हमें एक सुना दो एक गीत।
0: हाँ, कौन सा सुना दे?
1: बिल्कुल, मैं खेल जाती हूँ तुम्हारी नगर जावा भाई दीवानी में बारी हमारी जावा संध्या सलगम।
0: संध्या सरगम को है वो?
1: हाँ
0: बिल्कुल, यानी नो नो, हम जरूर सुनवा दें आपको। और बताओ पार्वती जी, प्रोग्राम कैसे लग रहा है रेडियो के?
1: प्रोग्राम बहुत अच्छे लग रहा है दीदी।
0: तो ठीक है पार्वती जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको जरूर सुनवा रहे हैं आपकी पसंद को जो लोकगीत। ठीक है
1: दीदी, सुना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: का नाम?
1: पान कुआ।
0: कितने से बोल रही?
1: मस्तापुर से।
0: अच्छा पान कुआ जी, तो मस्तापुर में क्या हो रहा हो आजकल?
1: आज लोकगीत अपनी पसंद को सुना।
0: ठीक है, तो हम आपको जो सुनवा रहे हैं अपनी पसंद को लोकगीत। ठीक है।
1: हाँ।
0: नमस्कार। नमस्कार।

0: हेलो सहेली,
1: को बोल रही?
0: हमारे ही बोल रहा है मस्त पैसे।
1: ठीक है तो आज बताओ कौन सा लोग किसने आपको?
0: हमें तू माशाल्लाह है तुम अज्जा।
1: अरे वाह क्या बात है, तुम
0: पंचांगे तो हाँ वही लोग सुनने में
1: बहुत बढ़िया। तो हम आपको जरूर सुनवाए लोग। ठीक है
0: नमस्कार।

साथियों, अभी आप सुन रही थी हमारी सखियों की मनपसंद फरमाइश को, और क्योंकि अब हमारा समय भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो हमारी जो सखियां इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई हैं, अगर वो अगले कार्यक्रम में शामिल होना चाहती हैं, तो हमें जरूर कॉल करें हमारे नंबर 94-25-14-17-26 पर। जी हाँ सखियों, और आपको कॉल करना है शुक्रवार के दिन। तो हेलो सहेली कार्यक्रम से जाने की दीजिए अपनी दोस्त वर्षा को।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबेरा अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। और दोस्तों, जैसे कार्यक्रम को समय भाव है सो हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम छिरिया बाड़ा। जी हाँ दोस्तों, सो साथियों, छिरिया बाड़ा कार्यक्रम में अपन बात करत हैं खेती किसानी के संगे संगे पशुपालन की। सो दोस्तों, आज अपन ई कार्यक्रम में पशुपालन की नस्लन को और पशुअन के पोषण पे उनके आहार पे अपन बातचीत करें। दोस्तों, बात करें पशु आहार शब्द, जैसे कि नाम से ही पता चल जात के पशु की बात हो रही है। और पशु आहार यानी कि पशुओं की 24 घंटे में दी जाने वाली आहार, ऐसा आहार जो पशुओं को आवश्यक पोषक तत्वों, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, विटामिन युक्त का उच्च अनुपात और उचित मात्रा में दी जाने वाली आहार, जो पशु की बढ़वार स्वास्थ्य, अधिक दुग्ध देने में उत्तम क्षमता बनाए रखें। सो दोस्तों, पशुओं के लाने अपने आहार पे आगे भी बात करें और उनकी नस्ल पे बात करें। सो ये बातन के संगे संगे आप पहला एक बढ़िया से गीत को सुन लेते फिर आगे कार्यक्रम में। जी गीत को गा रहे हैं रामाधीन आर और रेखा राजी।

0: लाओ मोए कंगना जैसी पेरे देवरानी। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है, गीत को गा रहे थे रामाधीन आर और रेखा राज्य। अब दोस्तों अपन चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। सो दोस्तों आज के समय में पशुपालन एक बहुत अच्छी उभरता हुआ व्यवसाय है।
1: जी हाँ,
0: पशुपालन भी कृषि व्यवसाय की एक शाखा है जिसमें कई प्रकार के पशुओं को उनके दूध व अंडे व अन्य उत्पादों के लिए पाला जाता है। पशुपालन के लिए आपको पशुपालन की जानकारी होना अति आवश्यक है। यहाँ पर आप जानेंगे कुछ टिप्स जिसे आप पशुपालन जैसे कि भैंस मुर्गी भेड़ बकरी पालन आदि अच्छे से कर सके, अधिक मुनाफा कमा सके। सो दोस्तों अपन सबसे पहला अपने पशु की नस्ल को ध्यान से चुने।
1: जी हाँ,
0: अगर अपन कोनो सो भी पशु पाल रहे तो उनकी सबसे पहला

नस्ल को ध्यान में रखें। खास तौर पर भैंस और बकरी पालन के व्यवसाय में जहां आपको पशु का दुग्ध व मांस बेचकर मुनाफा होता है, आपको अपने पशु की नस्ल का चुनाव काफी ध्यान से करना चाहिए। हर नस्ल का पशु अच्छा एवं ज्यादा दूध नहीं दे सकता, इसलिए आप पशु की नस्ल चुनते समय सावधानी बरतें। सो अपने पशु को अच्छे पोषण वाला आहार ही दें। अगर आप भी पशुपालन व्यवसाय से जुड़ने का मन बना रहे हैं तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि यदि आप अपने पशु को अच्छा चारा व दाना पानी देते हैं तो उससे न केवल उसकी सेहत अच्छी रहती है बल्कि पशु की उत्पादक क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। पशुपालन करते समय आप अपने पशु को सही मात्रा में पोषण वाला आहार ही खिलाएं, जिससे आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको मुनाफा भी अधिक प्राप्त होगा। अब दोस्तों बात आती है कि अपने पशु का आवास स्वच्छ रखें। जी हाँ, अपने पशु का जो आवास है उसे साफ और स्वच्छ रखें। पशु का आवास जितना अधिक स्वच्छ होगा उतना ही आपके पशु को बीमारी का खतरा कम रहता है। पशुओं को नियमित रूप से नहलाएं और उनके आवास के लिए किसी ऊंची जगह का चयन करें, जिससे बारिश एवं नालियों का पानी, मलमूत्र इत्यादि से वह बाहर रह सके। आपके पशु के आवास में कम से कम 2 से 3 जगह से अच्छी धूप आनी चाहिए। आवास में धूप के आने से न केवल वहां के कीटाणु मरते हैं बल्कि आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पशु के लिए पानी की सुविधा। पशु आवास में पशु के लिए पानी एवं खाने की उपलब्धता का भी ध्यान रखें। डेयरी के कामों में वैसे भी पानी की काफी जरूरत होती है और खास तौर पर गर्मी के मौसम में आपको पशु के लिए पानी उचित मात्रा में जरूर रखना चाहिए। पशु के स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखें। पशु पालन में अपने पशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पशु पालन में सबसे जरूरी बात यह होती है कि आप अपने पशु को सही समय आने पर उसे सभी आवश्यक टीके लगवाएं, उसको लू लगने से बचाएं, चारा पर्याप्त मात्रा में दें ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। पशु की नियमित रूप से डॉक्टरों से जांच कराते रहें। अगर आपका पशु कभी बीमार होता है या आपको वह कुछ सुस्त दिखाई देता है तो तुरंत उसे जानवरों के डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा हो सकता है कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो। कभी भी जानवर के बीमार होने पर खुद उसका इलाज करने की कोशिश ना करें, यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अपने पशु को अच्छा मुनाफा होने पर ही बेचें। अपने पशु को बेचने के लिए सही समय आने का इंतजार करें। अच्छी नस्ल वाले पशु को सही समय आने पर काफी अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। जैसे कि अगर आप बकरी पालन करते हैं तो बकरी ईद के समय पर अपनी बकरी को अच्छे मुनाफे पर भी बेच सकते हैं। पशु उत्पादों में मिलावट ना करें। अगर आप बाजार में पशु का दूध बेचना चाहते हैं तो आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है, पर अगर आप अपने पशु उत्पाद में पानी या किसी और चीज की मिलावट करेंगे तो वह आपके व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है। पशु उत्पाद में मिलावट करने से आपका मुनाफा तो बढ़ जाता है, लेकिन मिलावट करने पर आपके ग्राहक आपके उत्पाद को नापसंद करने लगते हैं व आपके खिलाफ शिकायत भी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर आप सघन पशुपालन या आश पशुपालन करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी उचित ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप जानवरों से होने वाले रोगों के शिकार बन सकते हैं। टीबी जैसे रोगों से एक उदाहरण है। जानवरों के मल में पैदा होने वाले बैक्टीरिया और उनमें बैठने वाली मक्खियां आपको बहुत बीमार कर सकती हैं। पशुपालन की सरकारी सेवाओं का भी लाभ उठाएं। सरकार की तरफ से कृषि उद्धार के लिए किसान हेल्पलाइन जैसी

कई सेवाएं शुरू की गई हैं। आप इन सेवाओं का लाभ अपनी भाषा में मुफ्त उठा सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटा सातों दिन चालू रहती है। तो कभी अगर आपको पशुपालन से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो देर किए बिना किसान हेल्पलाइन पर आप कॉल कर सकते हैं। किसान हेल्पलाइन नंबर है 1551 या 1800। सो देखो दोस्तों, जहाँ पर ने पशुपालन से संबंधित जानकारी जानी है, अब एक क्रम में अपन एक गीत को सुनत और गीत को आनंद ले। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। आओ दोस्तों सुनत ही गीत को जिया गा रहे हैं राजकुमार त्यागी जी और अमूल अहरवाल।

बिल्कुल दोस्तों, जो 3 दिन आपको मिला रही उड़जे है हंस अकेला। देखो कितना अच्छा जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो। ये गीत खुंगा रहते अमूल अहरवाल जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों आज के ये कार्यक्रम छिड़कियावाड़ा से आपके दोस्त मातादिन भैया को जाबे को समय हो गए है, सो हमें दो ये कार्यक्रम से जाबे की अनुमति। अपनी तपनी पर हुई मुलाकात ये कार्यक्रम में एक बेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईवीरा अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली को। और दोस्तों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक गायक कलाकार से भी बात करते हैं और कछु विधा के अनुसार अपन गीतन को भी सुनते हैं। तो दोस्तों, ई में अपन आज पहला तो मिले भैया बाबूलाल कुशवाहा जी से और उनसे जाने के उनने गाबो बजाबो कैसे सीखो है, काका विधान जी गाउत हैं। और दोस्तों, एक के संगे संगे देखो अपने जो भारतीय परंपरा में नवदुर्गन को त्योहार मानो जाते, वो त्योहार भी अपनो आ रहा है, बिल्कुल नियारे आ गो है। तो दोस्तों, अपन को त्योहार में भी गाउत बजाउत हैं, तो ऊ त्योहार में जो देवी गीत अपन गाउत हैं वह देवी विधा को आउत है, तो ऊ देवी विधा के गीत भी अपन आज ही कार्यक्रम में सुने और भैया बाबूलाल से भी उनकी जुबानी को सुने। तो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में और सुनत रहो जो कार्यक्रम विधा बुंदेली को। लेकिन दोस्तों, बाबूलाल जी से मिलवे से पहले अपन सुनते हैं एक बढ़िया से गीत को और गीत को आनंद आप और लो और हम सो ले। तो दोस्तों, आप सुनते हैं सबसे पहला तो एक गीत को और गीत को आनंद लेते हैं।

0: निलारी
1: बारे प्यारे
0: नांग काली क्या करे मेदारे डूड़ा बेल सवारी तुमने महिमा पड़ी मेरा।

जो भांग धतूरा खावे अजब लगावे तारी। निर्गुण सुरगुण निराकार में नाम तुम्हारो भारी। भगवान दास कहे।

0: बिल्कुल दोस्तों, मोरी नैया पार लगा दो भोले बाबा लहरी। देखो दोस्तों, कितना प्यारो गीत अपन सब जन ने सुनो है और गीत को आनंद लाओ है। और दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया बाबूलाल कुशवाहा जी। तो साथियों, बाबूलाल कुशवाहा जी के गीत के बाद अब बाबूलाल जी से बात भी करते हैं कि भाई कैसे गावो बजावो इनने सीखो है और कैसे कैसे इनने काका गाओ है। तो दोस्तों बाबूलाल कुशवाहा जी से आओ अपन मिलते हैं ये छोटे से संदेश के बाद। अच्छा भैया, पहला तो आप अपना नाम बताओ।
1: बाबूलाल कुशवाहा।
0: बाबूलाल कुशवाहा कहाँ से हैं अपन?
1: बासवान
0: चताव से बाबूलाल जी। अच्छा बाबूलाल जी, आप जा बताओ कि आपने जो गावो कहाँ से सीखो? तो
1: हमने हमारे बूढ़े पुराने हैं थे पहले के, तो वो था पहले से
0: भजन जी वो था आपके थे। अच्छा तो आपने वो नहीं से सीख लो जो
1: पहले बैठा था दादा दूर
0: हाँ दूर दूर
1: कई बस सुना हो पाए नहीं।
0: हाँ
1: फिर उनने कहा था मैं सीख नहीं हमने। हाँ
0: हाँ
1: तो उनने फिर बजवाओ घुमवाओ।
0: अच्छा तो आपको जो पता है कि आप जब कितने साल की हुई हो जब आपने सीखो है? जो
1: हुई हम 15-16 साल की।
0: 15-16 साल की। तो आपको अच्छी ले हती मतलब गावे की
1: ले हती?
0: तो जैसे आपने 15-16 साल के हते हो और आप जैसे जो होते भजन वजन तो आप उनके करके उनके बैठन लगाते
1: हो
0: तो जो भजन कटेली होते क्या है कम गहू होते ऐसे
1: पहले तो जैसे ब्याह नहीं करेंगे आदमी अन्य
0: हाँ
1: बैठेगा तो रोई होते पहले तो।
0: अच्छा
1: अगर मतलब रिश्तेदार आ गए तो कही आज वहाँ होने होने हैं।
0: अच्छा
1: अच्छी ले लगी।
0: हाँ फिर तो मैं ले बढ़त गई। फिर तुमने सबसे पहला का गाओ तो कछु ऐसी आप याद हो बे बादन की जब आपने सबसे पहला शुरुआत करी थी गावे की तो का चीज गाई?
1: हमने गाओ कछु नहीं।
0: हाँ
1: वो तो जैसे आपने गाओ
0: हाँ सो हमने उठो संगे लो वाला
1: आपने कह के हम तुमको बोलो।
0: हाँ
1: ऐसे ऐसे सीख गए।
0: अच्छा मतलब गावे वाले ने उठा दो फिर आप तुम साइड में बोलो।
1: हाँ पहले छेड़ पर सीखो एक दूसरे से।
0: हाँ
1: फिर उन्हें सको का जाप गाना तो नहीं आओ।
0: हाँ
1: सुनने के सुनाओ।
0: हाँ
1: ऐसे ऐसे गाओ
0: सीख गए
1: सब चाहे थे पार्टियां में चले जाओ।
0: अच्छा अच्छी बात है। देखो तो आपको कितनी जब लगन से हो सको
1: लगन से
0: है के? जब जिगर जी आदमी
1: हमें जो लगन है कि ब्याह है हम एक साल घर नहीं रहे।
0: अच्छा मतलब ब्याह आपको होगा तो?
1: हाँ घर नहीं आए एक साल। हम
0: एक साल आप घर नहीं आए तो कहाँ गए थे आप?
1: जो सकाउ तो संग ले जाए।
0: अच्छा आपको घर से कोई मतलब नहीं ले बताओ। लेकिन अब आजकल के लड़का नहीं है ऐसे बेकच्चा हमें कुछ सिखाया चाहना हमें कछु नहीं।

0: इतने हमें तो घर रहने
1: नहीं कहते रोटी खाई हमने।
0: अच्छा
1: वो तो ही रहे।
0: अच्छा को का उत्तो आप कहते जो ऐसे हते हमारे संग ऐसे करते
1: चा से हते परिवार के
0: हां
1: तैयार हाल को सुबह गुजर गए अब।
0: अच्छा
1: बे हां गुरु की हते
0: तो बे गाउत हते सारंगी बजाउते का
1: हो सारंगी
0: तो बे गाउते सारंगी बजाउते तो तुम तो फिर उन्हीं के संगे लग गए
1: बस
0: घर से कोई मतलब नहीं। अच्छा शादी क्या साल की हते जब आपकी हो गई थी?
1: शादी हुई थी मेरी 18 साल में।
0: 18 साल में तो देखो आप हो जब लगन लगी तो लगन में आपने ना तो शादी देखी ना घर देखो ना कछु आप हो तो अपनो मंजिल दिखाई थी कि हमें जो काम करने वो करने
1: हमें सीखने सीखने का बजाव
0: है। तो देखो एक, एक लगन हो जी
1: अब यही तो अपनो साजबाज
0: आप
1: बूढ़े पानों वाले रखे हम अपने।
0: अच्छा तो इस साजबाज में काका हो काका है बजावे बाबू
1: सारंगी है खंजड़ी है जे झाने हैं।
0: अच्छा
1: झीका है
0: झीका है जे चीजें बजाते हैं आपकी तो आप देखो भाई जो पुराने चलन की जो बाजे हैं जो अभी भी आप संभाल के रखे हैं अच्छी तरीका से
1: अगर फूट जाते हम उन्हें मड़ भी ले
0: काऊ पे मड़वा की जरूरत नहीं है और को मड़ पाते ना के नहीं जैसे कि खुद ही मड़ नहीं आती तो
1: नहीं हम खुद ही सीखा उन्हें सब सिखा हमें।
0: अच्छा
1: हां गुरु जी ने
0: हां
1: गावो बजावो और बनावो सब
0: के अगर जब फूट जाए तो यही से मड़ लो
1: मड़ लो।
0: अच्छा काय से मड़ता अगर फूट जाए तो
1: जैसे जो बकरा की खाल है बखत जा की
0: हां
1: वो जाता जाना बढ़िया गोवा मिल जाए।
0: अच्छा
1: गोवा की बढ़िया बोला
0: हाँ।
1: वो दन की दाल बांट के
0: अच्छा
1: वो उसे घेरे से लगा दो
0: हाँ।
1: कड़ाई बना के जो जो जाएगी रस्सी की
0: हाँ।
1: वो दो तीन आदमी टेरे को चढ़वा दो डांट के।
0: अच्छा
1: दूध ना चढ़ी अंदी
0: ले साहब तो इको फेविकोल भी नहीं चाहने
1: हाँ हाँ फेविकोल तो फेरे वो दन की दाल के सामने।
0: अच्छा जयते की ज्यादा काम करत चलो भैया तो देखो आपने कितनी अच्छी बात अपने साथी में बताई। तो जब आपने काको के सीखो जो सब काम तो जब से आप तो उन्हीं के संग लगे रहे
1: हो लगाई जा बिल्कुल
0: हैं
1: जरा काम का घर करो बाद में उन्हीं के संग कर गए।
0: अच्छा घर से कोई मतलब नहीं रहो। चलो भैया जी तो देखो आपने कितनी अच्छी बात बताई। बस जी आदमी को जी की लगन लग जाए वो आदमी वो काम करके होगा
1: रोकता ही
0: है
1: ये दागा हो
0: हां
1: नन्ना गए लो अभी।
0: अच्छा की लो आवे गए
1: हां घर अंजन
0: बहू को
1: हो
0: हां
1: सो हाँ भज्जी बोले के काय तो आ तो जाना नहीं है भजन में
0: हां जब बहु घरे आ गई
1: कहते कहते कहते तो नहीं जाने
0: हां
1: हमने जाना तो है
0: हां
1: ए बोले मां नहीं जाने
0: हां
1: और अपने लगा सावन
0: हां
1: और नन्ना लगाई के नहीं आ पा हमारे संग भाग गए
0: ले साहब
1: 3 दिन में लौटे थे।
0: ओहो तो जे तो जब की बात है जब आप मुझे लगन लगी थी लेकिन अब के लड़का भाई आज का नहीं बेकत के हमें तो नन्ना को इंतजार है कब आ रहे। चलो भैया बाबूलाल जी आपने इतनी अच्छी बातचीत करी अपने साथियों से ही खिलाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी नमस्कार
1: नमस्कार।
0: हाँ देखो साथियों जी तो हते भैया बाबूलाल जी और बाबूलाल जी ने अपनी पूरी कहानी बता दी है कि हमने कैसे गावो बजावो सीखो है कितनी मुश्किल से सीख पाओ और काका गाऊ थे। और दोस्तों एक के संग अगर आप और भी गाऊ थे बजाऊ थे और अपनी बात को हम तक रखवो चाह रहे रेडियो से बतावो चाह रहे तो आप हमसे जरूर संपर्क कर सकत। दोस्तों हमारा संपर्क नंबर है इस प्रकार से 0-75-25-84-81-11। साथियों जो नंबर लगा के आप हमसे सीधी बात कर सकते के माता दिन भैया हम जो कार्यक्रम गाउत हैं जो देते हैं और जा विधाकों भी गाउत हैं। तो दोस्तों एक विधाकों अपन उजागर कर भी किलाने और साथियों तक पहुंचा भी किलाने और आदमी ये सुन के सीख सकें ई किलाने आप हमसे जरूर संपर्क करें कि आप कैसे नजा आपने सीखी है और काका आप गाउत हैं। तो दोस्तों हमने आपको नंबर बताई दो और ई नंबर पे आप फोन लगा के हमसे सीधी बात कर सकत। और दोस्तों अब एक क्रम में अपन देखो कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ भाई कार्यक्रम में सुना थे कछु गीतन को और गीतन को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।

गीत खो और लेते हैं गीत को आनंद। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में। तो आओ दोस्तों सुनाते हैं ये प्यारे से गीत खो।

बिल्कुल साथियों, तुम बिन काज बने ना देव दर्शन मां विराज मोरे अंगना। देखो दोस्तों, कितनो प्यारो जो देवी गीत अपन सब जनन ने सुनो है और ये देवी गीत को आनंद लाओ है। और दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनते हैं अपन एक और बढ़िया से देवी गीत को और वो गीत को आनंद लेते हैं। तो साथियों आप ऐसे सुनते रहो जो कार्यक्रम विधा बुंदेली को अपने दोस्त माता दिन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, सब पे कृपा राखियो हो माँ। देखो दोस्तों, कितना प्यारो जो देवी गीत अपन सब जनन ने सुनो है और ई गीत को आनंद लो है। और दोस्तों, ई गीत को गा रहे थे भैया हरी राम जी। तो साथियों, अब हरी राम जी के ही गीत के बाद हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम से आपके दोस्त माता दीन जी को जावे को समय हो गयो है। तो अपने दोस्त खुद ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति और अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। तो दोस्तों आप सब जन खोजे आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों आज की सभा इतनी संपन्न होते है, सो चलत चलत आप उन्हें लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आप उन्हें फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सकें। दोस्तों हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतनी समापन हो गए को समय हो गए है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।